मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार दिए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज

0: पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इखलो में वो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में सामयिक कृषि कार्य विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम सामयिक कृषि कार्य की चर्चा करेंगे। दलहनी फसलों में इस समय उड़द और मूंग की खेती आप किए हुए हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि पहली सिंचाई 25-30 दिन बाद करें। अगर पहली सिंचाई बहुत जल्दी कर देते हैं तो इसमें जड़ों तथा ग्रंथियों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः पहली सिंचाई जो है 25-30 दिन बाद करें और बाद की सिंचाइयां आवश्यकता अनुसार 10-15 दिन के अंतराल पर करते रहें। इस फसल में कुछ खरपतवार भी आ जाते हैं जिनको निकाई करके नष्ट कर देना चाहिए। उड़द और मूँग की फसल में पीला चित्तवर्ण रोग, जिसे कि मोज़ेक रोग कहते हैं, इसका प्रकोप काफ़ी होता है, जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। यह रोग प्रायः सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है, अतः इसके नियंत्रण के लिए उस सफ़ेद कीट का ही नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए मिथाइल ओ डेमेटान दवा प्रयोग करते हैं, जो कि 25 EC के रूप में आती है। अगर 5-10 प्रौढ़ मक्खी प्रति पौध की दर से दिखाई पड़े तो इस दवा का छिड़काव करना चाहिए। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। अगर यह दवा उपलब्ध ना हो तो डाइमेथोएट दवा प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 30 EC के रूप में आती है। इसकी भी 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो 1 लीटर दवा की आवश्यकता होगी और लगभग 600-700 लीटर पानी की। इस तरह से आवश्यक दवा की मात्रा लेकर के और आवश्यक पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। उड़द और मूंग की फसल में थ्रिप्स कीट का भी प्रकोप होता है। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं तथा पत्तियां जो हैं सिकुड़ जाती हैं और पैदावार प्रभावित होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए भी मिथाइल ओ डेमेटान दवा का प्रयोग करते हैं। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कुछ किसान भाई सूरजमुखी की भी खेती किए रहते हैं तो ध्यान रहे कि सूरजमुखी की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अब हम थोड़ी सी चर्चा गन्ना की खेती की करेंगे। इसमें कुल 180 किलोग्राम नत्रजन की आवश्यकता होती है। 60 किलोग्राम नत्रजन यानी कि लगभग 120 किलोग्राम

0: यूरिया बेसल ड्रेसिंग के रूप में बुआई के समय ही खेत में प्रयोग कर लिया जाता है। बाकी जो मात्रा बचती है उसको दो भार में प्रयोग करते हैं, 60 किलोग्राम और 60 किलोग्राम। तो इसे जो है जून माह के पहले प्रयोग कर लेना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आखिरी मात्रा आपके पास बची है तो 60 किलोग्राम नत्रजन यानी कि लगभग 120 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव खेत में करें। ध्यान रहे कि जब आप यूरिया का प्रयोग करें तो खेत में नमी अवश्य हो। इसके अलावा गन्ने की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। चूंकि इस समय खेत खाली रहते हैं, अतः यह मिट्टी की जांच का सर्वोत्तम समय है। पहले मिट्टी का नमूना लेते हैं और फिर उसको जांच के लिए जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ पर भेजा जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक मिट्टी का नमूना लेकर के उसमें अपना नाम, पिता का नाम, खेत का नंबर और बोई जाने वाली फसल आदि का विवरण दर्ज करके और फिर उसे जांच हेतु भेजा जाता है। अभी अगर मिट्टी की जांच कराते हैं तो आपको समय से उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, फिर उस हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करके आप खरीफ की खेती आसानी से कर सकते हैं। हरी खाद के लिए समय ढांचा की भी खेती अवश्य करें। इससे जो है जो खेती में लागत आती है उसको भी आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक कृषि कार्य करना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में सामयिक कृषि कार्य विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं। निवेदित हैं भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत। कहते हैं, मंदिर में दीपक जलाने से पहले अपने घर को रोशन करें। दूसरे से कुछ पाने के बजाय कुछ खोने का मादा रखें। दूसरे पर हंसने के बजाय आत्ममंथन करें।

ईश्वर की ऐसी ही अनुकंपा है इस सृष्टि का निर्माण, जिसमें सामंजस्य है प्रेम और पाती का, दिया और बाती का, जिसका आभूषण है स्नेह सद्गुण करुणा और सौहार्द।

प्रेम के सागर नटवर नागर, नंद गोपाल कान्हा मदन मुरारी, हम सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा।

0: आप सुन रहे थे आराधना के अंतर्गत भक्ति रचनाएं। आज इसमें जिन गायक कलाकारों ने अपना स्वर दिया वो थे रूप कुमार राठौड़, तुलसी कुमार, जगजीत सिंह, ओम व्यास और गायत्री गुप्ता। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु। महापुरुष हैं राजा राम मोहन राय।
1: ये सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में उनके योगदान के कारण है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत और भारतीय पुनर्जागरण के अधिष्ठाता के रूप में जाना जाता है। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य शाश्वत भगवान की पूजा करना था। ये धार्मिक आडंबरों का प्रतिरोध था। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, जहां सामाजिक बुराइयों की निंदा की गई और उन्हें समाज से दूर करने के प्रयास किए गए। इससे भारत में तर्कवाद और ज्ञानोदय का उदय हुआ, जिसने परोक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया। राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को उस समय के समाज में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों के प्रति जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत था। आधुनिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित राजा राम मोहन राय ने तर्कवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता समाज की स्थिति में सुधार करने के बजाय चोट का कारण बन गई है। ये सामाजिक सद्भाव और विकास का मार्ग अवरुद्ध कर रही है। राजा राम मोहन राय मानते थे कि बलिदान और कर्मकांड लोगों के पापों की भरपाई नहीं कर सकते, ये आत्मशुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से ही किया जा सकता है। उनका ये भी मानना था कि धार्मिक सुधार सामाजिक

0: और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों एक ही हैं। राजा राममोहन राय सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। राजा राममोहन राय एक ईश्वर में आस्था रखते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक महिलाओं को अमानवीय उत्पीड़न जैसे अशिक्षा, पर्दा, बाल विवाह आदि से मुक्त नहीं किया जाता। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को मानवीय और सामाजिक भावना के उल्लंघन के रूप में और नैतिक पतन के लक्षण के रूप में चित्रित किया। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल प्रांत के हुगली जिले के राधानगर में 22 मई 1772 को हुआ था। उनके पिता का नाम रमाकांत और मां का नाम तारिणी देवी था। उनकी शिक्षा बहुत अच्छी हुई थी। वे संस्कृत, पारसी और अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। इसके अलावा वे अरबी, लैटिन और ग्रीक भाषा के भी जानकार थे। राजा राममोहन राय को वेदों और उपनिषदों का भी ज्ञान था और उन्होंने उपनिषदों के सिद्धांतों को शिक्षा में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए और धार्मिक कुरीतियों का पूरे धार्मिक तर्कों के साथ विरोध किया, जिसका अच्छा खासा असर पूरे समाज पर पड़ा। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आधुनिक भारत में समाज और धार्मिक सुधार के लिए एक प्रमुख जरिया बना। राममोहन राय ने आधुनिक शिक्षा की खूब पैरवी की। वे चाहते थे कि भारत की अच्छी परंपराओं का पश्चिम संस्कृति में विलय हो। उन्होंने खुद देश में बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की, जिसमें आधुनिक शिक्षा तंत्र को लोकप्रियता मिली। उनके लेखन का प्रभाव भारत के लोगों पर ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों पर भी अच्छा खासा पड़ा। राजा राममोहन राय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वर्नाक्यूलर प्रेस के अधिकारों के लिए उनके द्वारा छेड़ी गई लड़ाई प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मील का पत्थर है। उन्होंने फारसी में मिरातुल अखबार नामक समाचार पत्र और संवाद कौमुदी नामक बांग्ला साप्ताहिक भी निकाला। राजा राममोहन राय अपने समय के उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को महसूस किया। वो जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श स्वतंत्रता से अलगाव में नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के आपसी सहयोग के साथ साथ व्यक्तियों की अंतर निर्भरता और भाईचारे में है।
1: आप सुन रहे थे विचार बिंदु कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है बच्चों में डायरिया का संक्रमण और इसका चिकित्सा। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीएन यादव। आज आप सुनेंगे इसकी तीसरी और आखिरी कड़ी।
2: डॉक्टर पीएन यादव, बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग बच्चों में डायरिया का संक्रमण और इसकी चिकित्सा के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसा कि पिछले भाग में मैं आप लोगों को डायरिया क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चाएं की, आज हम ये जानेंगे कि इसका उपचार कैसे किया जाए, किस लेवल तक हम घर पे उपचार करें और किस लेवल तक हमको घर से बाहर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इनका उपचार, जैसे कि पिछले भाग में हम लोग चर्चा किए थे कि एक माइल्ड डिहाइड्रेशन मतलब हल्का डिहाइड्रेशन होता है, एक मॉडरेट कैटेगरी मतलब मध्यम का लेवल का डिहाइड्रेशन होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। हमको माइल्ड लेवल का डिहाइड्रेशन जो होता है वो घर में हम रह करके बच्चे को पानी देते रहेंगे, ओआरएस का घोल देते रहेंगे और साधारण भोजन देते रहेंगे, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी दो कैटेगरी जो मध्यम लेवल का होगा या सीवियर डिहाइड्रेशन होगा तो हम घर पर इलाज नहीं करेंगे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अब उपचार में मध्यम लेवल का ग्रेट कैटेगरी का है, जैसे बच्चे के अंदर डायरिया के बाद पानी कमी होती तो बच्चा चिचड़ा होने लगता है, चिचड़ा होगा तो उसके अंदर प्यास लगेगा बहुत ज़्यादा, पानी मांगेगा, तो हमको क्या करना है, सर्वप्रथम ओआरएस का घोल। ओआरएस का घोल अमूमन आसपास सरकारी अस्पताल में मिलेगा, नहीं तो आप घर पे घरेलू ओआरएस बना सकते हैं। जैसे एक गिलास पानी लीजिए, उबला हुआ पानी एक गिलास, 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें आप एक चम्मच चीनी डाल दीजिए, एक चुटकी नमक डाल दीजिए और आधा नींबू गाड़ दीजिए 10-15 बूंद, ये भी ओआरएस बन जाता है। तो बच्चे को दस्त हो, उल्टी हो या कुछ हो तो आप तुरंत ओआरएस देना शुरू कर दीजिए। आसपास की दुकान से

0: अपने मन से कोई दवाएं, एंटीबायोटिक्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल अपने मन से नहीं करना चाहिए। आप ओआरएस दीजिए, 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पे है तो कोई दिक्कत नहीं। छोटा बच्चा है, अगर 1 महीने से लेके 6 महीने तक या 6 महीने से कम उम्र का बच्चा है, उसमें डायरिया और दस्त हो रहा है, लेकिन बच्चा माँ का दूध पी रहा है और उसको कोई डिहाइड्रेशन या पानी कमी के लक्षण नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ओआरएस देने की भी जरूरत नहीं है। आप माँ के दूध पे रखिए, बाकी उसको देखते रहिए कहीं उसके अंदर पानी कमी तो नहीं लग रही है, जैसे बच्चा पेशाब कम तो नहीं कर रहा है, जितना लैटिन करे, जितना दस्त हो उससे ज़्यादा अगर बाथरूम कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तो उसके अंदर पानी कमी नहीं हो सकती। 6 महीने के बाद के जो बच्चे होते हैं उनमें हमको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद हम बाहर की चीज़ें देते हैं बच्चों को, उसमें भी हमको यही ध्यान देना है कि बच्चा अगर बाथरूम कर रहा है, दस्त हो रहा है, उल्टी हो रहा है, उसके बाद ही बाथरूम कर रहा है और सुस्त नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं, हम ORS देते रहेंगे। और साथ में अगर फीवर है, बुखार है, तो बुखार की दवा दे सकते हैं। बाकी और कोई समस्या लगे, बच्चा सुस्त लगे, कुछ लगे, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दूसरे लेवल पे आता है कि बच्चा आपका अगर सुस्त लगता है कि नहीं, ये बच्चा सुस्त हो रहा है, पेशाब कम कर रहा है, पेशाब थोड़ा ज्यादा पीला कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर पानी कमी ज्यादा हो रही है, ऐसे ऐसे पोजिशन में, ऐसे में आप डॉक्टर से संपर्क करिए। तीसरी चीज कि बच्चे को ORS के साथ साथ और क्या दे सकते हैं, तो घरेलू आहार देना चाहिए। आहार में हमारे यहाँ माताएं बहने बस सिर्फ दूध को ही एक आहार समझती हैं, खासकर एक उम्र से छोटे बच्चे के लिए ऐसा नहीं है। 6 महीने तक तो माँ का दूध पिएगा, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे को गाय भैंस का दूध नहीं देना चाहिए। ऐसे बच्चे को हमको माँ का दूध देना है, साथ में ORS का घोल पानी भी दीजिए, पानी उबाल करके दीजिए, दाल हुआ, दाल का जूस हुआ, या चावल हुआ, चावल मतलब माड़ सहित भात हुआ, भात के साथ दाल मिला करके आप फेंट करके इसको पतला बना करके बच्चे को खिला सकते हैं, पतली खिचड़ी बना के दे सकते हैं, दही छाछ ये सभी बच्चे को दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, कोई भी फल हो उसका जूस हम दे सकते हैं, हल्की चीज जो आराम से बच्चा पचा ले। दूध चूंकि गरिष्ठ होता है इसलिए बच्चे को देने से हम लोग थोड़ा सा परहेज करते हैं, नहीं तो फट से उल्टी करेगा या दस्त करेगा और इससे पानी कमी और बढ़ सकती है। ये कुछ चीज़ें हुई जो हम घर पे उपचार बच्चे का अपने कर सकते हैं, खासकर WHO ORS जो नज़दीकी अस्पताल में हमारी सरकार उपलब्ध कराए हुई है, बिना कुछ किए आप वहाँ जाइए, वहाँ से ORS लीजिए और घर पे आप ध्यान देते रहिए। अगर लगता है कि एक दिन हो गया बच्चा अभी मेरा ठीक नहीं हो रहा है, 2 दिन हो गए और ठीक नहीं हो रहा है, दस्त करते जा रहा है, डिहाइड्रेशन नहीं है, फिर भी आपको बच्चे को आराम नहीं लग रहा, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। और एक तीसरी कैटेगरी आती है कि सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है उसके अंदर, ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत सीवियर डिहाइड्रेशन मतलब कि बच्चा सुस्त पड़ रहा है, उसके अंदर पानी की बहुत कमी हो रही है, पेशाब नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करेंगे, आप अपना इलाज नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा आपका बोलेगा नहीं कुछ। ये सब कुछ चीजें होती हैं जो हम आहार और साथ साथ ORS का घोल। अब आता है कि दवाएं क्या क्या देनी चाहिए, तो दवाओं के बारे में सिर्फ हम ये बोलेंगे कि आप कितना देना है, कैसे देना है, आप अपने से डिसाइड मत करिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कि कोई भी एंटीबायोटिक्स आप अपने मन से न दीजिए, क्योंकि बच्चों में डायरिया अमूमन वायरस से होता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, तो आप लोग कृपया एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल न करें, बाकी डॉक्टर को छोड़।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है श्रीराम चरितमानस से संगीतमय पाठ।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी।

किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला

विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की इस कड़ी के गायक कलाकार थीं शोभा जोशी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए जानकारी दे दें आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में प्रभास पाटन सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर उनके संबोधन का सजीव प्रसारण आप सुनेंगे दिन 11:10 से, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में रात्रि 10:30 पर और दोपहर 12:45 पर सुनिएगा पंडित किशन महाराज का एकल तबला वादन, और सुबह 7:31 पर सुनिएगा विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रमों में रात्रि 8 कलाकार होंगी मिताली सिंह, और दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगी अर्चना माहेश्वर। गैर फिल्मी गीत गजल का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। कवि गोष्ठी रात्रि 10 आप सुनेंगे। प्रतिभागी कवि होंगे अशोक कुमार सिंह, अत्रि भारद्वाज, राम नरेश और सविता सौरव। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई धान के खेत की तैयारी विषय पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत के अलावा बाबूला

यादव व साथियों का गाया लोकगीत भी सुनेंगे। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 1:45 पर और सुबह 9:50 पर। युवाणी शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित आप ये कार्यक्रम सुनेंगे दिन में 2:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भोजपुरी गाने, दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी में महिलाएं चर्चा के अलावा सुनेंगे गीत संगीत, एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे से, झनकार आप सुनेंगे सुबह 10 बजे से, मधुरिमा 8:45 पर और रोज की तरह गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनेंगे सुबह 7 बजे से। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः चतुश्शतोत्तर नवसहस्र कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रथमस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य श्री सोमनाथ महादेव मन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य पञ्चसप्ततिः वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकं च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पंचमंत्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमंत्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मंत्रिमंडले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्य सर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्य विषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डल दण्डाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्य

0: यां सभायां उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त विश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थं आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा घटबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त विश्व शर्मणे नूतन मन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिन नवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: उससे अप्पा
1: आ गई है बनारसी कुड़ी। सो बनारस, लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
0: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक, मस्त और चकाचक हैं। बनारस, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि अक्सर कही गई बातों का जो मतलब होता है वो गलत समझा जाना कोई नई बात तो नहीं है, है ना? कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कहती हैं या कहते हैं और सामने वाला उसका अलग ही अर्थ निकाल लेता है। ये प्रॉब्लम भाषा की जटिलता, शब्दों के कई अर्थ और कम्युनिकेशन में क्लैरिटी की कमी होने से उत्पन्न होती है। इसे जहांगीर और नूरजहां के एक किस्से से समझा जा सकता है। कहा जाता है कि जहांगीर ने एक बार कबूतर हाथ में लेकर नूरजहां से पूछा कि कहां अपर है। यहाँ अपर का मीनिंग उसके जोड़े से था, लेकिन नूरजहां ने अपर को अपंख यानी बिना पंख वाला समझ लिया और जवाब में कहा कि वो तो उड़ गया, वो तो सपर यानी कि पंखों वाला है। इस तरह एक ही शब्द के अलग अर्थ ने सिचुएशन को भ्रमित कर दिया। आज के समय में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। लोग जो कहते हैं उसका सही अर्थ समझने के लिए कई बार गहराई से सोचना पड़ता है। टेक्निक्स और एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जहां सीधे और स्पष्ट उत्तर मिल रहे हैं, वहीं आम बातचीत में अप्रत्यक्षता देखने को मिल रही है। आज लगभग रोजाना सैकड़ों संदेश, ईमेल, पोस्ट और कमेंट्स के बीच शब्दों का अंबार लगा रहता है, लेकिन इन्हीं के बीच ये सवाल भी उठता है कि क्या रियलिटी में वही कहा गया था जो समझा गया। सिचुएशन ये है कि ये समय शब्दों की वक्रता को समझते समझते रिश्तों में वक्रता आने लगती है। आखिर ऐसा क्यों हो गया है कि हमें हर बार सामने वाले की बातों में छिपे संकेत, उद्देश्य या प्रॉफिट लॉस का हिसाब लगाना पड़ रहा है? शब्द न बनारस संवाद और आपसी संबंधों की डोर होते हैं। आज की दुनिया में हम सुनते कम, समझते ज्यादा हैं, वो भी अपने नजरिए से और अपनी समझ से। यही रीजन है कि आज हम इन्हीं संवादों में छिपे संकेत, उद्देश्य और लाभ हानि का हिसाब लगाने लगे हैं। तो भाई, रिश्तों में हिसाब किताब नहीं होता और जब ये लगने लगे तो वो रिश्ता ही नहीं होता, है ना? गुड मॉर्निंग बनारस।

ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। तारीख है आज 11 मई 2026 और दिन है आज सोमवार का। तो चलिए फटाफट सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर बनारस में। आज खास राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह अपने शहर बनारस पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर दोनों लोग लौट जाएंगे। सीएम और राज्यपाल लगभग 3.5 घंटे तक यहां रहेंगे। इनके आगमन को लेकर लगभग 5 घंटे का डायवर्जन एडवाइजरी और रूट प्लान जारी किया गया है। आगमन, भ्रमण और प्रस्थान के दौरान मैदागिन और काशी विश्वनाथ मार्ग पर कड़े सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। मैदागिन से गुदौरिया मार्ग नो व्हीकल जोन रहेगा। सड़क मार्ग से विश्वनाथ धाम जाना है, इसलिए 9 बजे से ही रूट डायवर्ट कर दिए जाएंगे। संपूर्णानंद से 3 घंटे पहले ही टेम्पो ट्रैवलर, आर्मेनिया बसें, क्रूजर लहुराबीर मैदागिन की तरफ नहीं जाएंगे। इन वाहनों को लकड़ी मंडी की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा। विश्वेश्वरगंज तिराहे से 1 घंटे पहले वाहन रोक दिए जाएंगे। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कल रात राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। ब्रीफिंग के दौरान वीआईपी मूवमेंट पर रूट डायवर्जन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, निर्बाध यातायात व्यवस्था और जाम की स्थिति रोकने की बात कही। तो भाई, आज ट्रैफिक प्लान को देखकर ही घर से निकलिएगा। संपूर्णानंद गेट से 3 घंटे पहले टेम्पो ट्रैवलर, आर्मेनिया बसें, क्रूजर वाहन मैदागिन नहीं जाएंगे। विश्वेश्वरगंज तिराहे से 4 पहिया वाहन मैदागिन नहीं जाएंगे, इन्हें गोलगड्डा तिराहा भेज दिया जाएगा। गुदौलिया चौराहे से कोई वाहन मैदागिन चौराहे की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। मरिमाई तिराहे से तेलियाबाग तिराहे की तरफ वाहन नहीं जाने दिए जाएंगे, इन्हें आंध्रा पुल चौराहा, मलदहिया चौराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा। थाना चेतगंज से वाहन को लहुराबीर चौराहे की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। बेनिया तिराहा डायवर्ट कर दिया गया है। सुनारपुरा तिराहे से 4 पहिया वाहन और जंगमबाड़ी से 2 पहिया वाहन को गुदौलिया चौराहे की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। गिलट बाजार से वाहन भोजूबीर सब्जी मंडी तिराहा नहीं जाएंगे, इन्हें शिवपुर चुंगी तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा। कल अपने शहर में तेज धूप से लोग परेशान दिखे। संडे होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इन्हें गर्मी से राहत देने और हवा को शुद्ध बनाने के लिए एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा था। दूसरी तरफ शहर के प्रमुख चौराहों पर धूप से बचाव के लिए पर्दे और टेंट लगवाए गए हैं, ताकि लाल बत्ती होने पर जब लोग चौराहों पर खड़े हों तो उन्हें धूप से राहत मिल सके। बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से मौसम कुछ ठंडा होने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली थी, लेकिन शनिवार से फिर सूरज के तेवर जो है वो बढ़ गए हैं। तो इस गर्मी के मौसम में ऐसी पहल से लोगों को काफी सुकून और राहत महसूस हो रही है। इसके साथ ही अपने शहर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी के बाद कबीर चौरा अस्पताल अब हाईटेक यानी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनेगा। जी हां, 315 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अस्पताल का कल रविवार को पूर्व मंत्री और विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने भूमि पूजन किया। विधिवत पूजा अर्चना के साथ 500 बेडेड हॉस्पिटल की नींव रखी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव का जय घोष के साथ विधायक ने फावड़ा चलाया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने अस्पताल का नया प्रोजेक्ट देखा, जिसमें आधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। अस्पताल में एक छत के नीचे हार्ट कैंसर और न्यूरो मरीजों को एम्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 50 से अधिक आईसीयू बेड और 100 से ज्यादा एचडीयू बेड होंगे। किडनी रोगियों के लिए 20 बेड का आधुनिक डायलिसिस सेंटर भी विकसित किया जाएगा। कल रविवार को एसएसपीजी मंडलीय अस्पताल में विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने बताया कि ये परियोजना केवल एक भवन निर्माण नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वांचल की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देने वाली पहल है। 150 साल पुराने अस्पताल के पुनर्निर्माण में पुराने ढांचे को हटाकर यहां 315 करोड़ रुपए की लागत से नया 8 मंजिला सुपर स्पेशलिटी भवन तैयार किया जाएगा।

टावरों वाले इस विशाल परिसर में आधुनिक चिकित्सा तकनीक, अत्याधुनिक मशीनें और हाईटेक उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आईसीयू, कैंसर, न्यूरो और हार्ट यूनिट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस यह अस्पताल पूर्वांचल के लाखों मरीजों के लिए बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। दिल, दिमाग और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज मात्र एक रूपये में होगा। 8 मंजिला इस हाईटेक अस्पताल में आईसीयू बेड और आधुनिक लैब होंगे, जिससे बीएचयू पर मरीजों का बोझ कम होगा और पूर्वांचल को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से पीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा 2 दिनों तक चली। ये 4 पालियों में आयोजित हुई। जनपद में 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पर कड़ी सख्ती के बीच परीक्षाएं कराई गई। इसकी निगरानी एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरे से की गई थी। वाराणसी में 50% से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। कल रविवार को दोनों पालियों में कुल 27,804 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, लेकिन इसमें 13,865 परीक्षार्थी ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, जबकि 13,940 स्टूडेंट्स अनुपस्थित रहे। पहली पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान विषयों की परीक्षा और द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला विषयों की परीक्षा हुई। तो जी, ये रहा अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 11th of May। साल 1940 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की थी। 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थान लिया था। 1998 में यूरोप की एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का बना। साल 2000 में जनसंख्या घड़ी के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची और साल 2008 में न्यूयॉर्क के कार्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने देश का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव भ्रूण तैयार किया था। अब स्पेशल इवेंट्स की बात करें तो आज 11 मई है और आज ही के दिन 1998 में भारत ने पोखरण में अपनी तकनीकी शक्ति का लोहा मनवाया था। जी हां, आज है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये दिन सिर्फ मशीनों का नहीं, ये दिन है हमारे साइंटिस्ट्स की सोच का, इंजीनियर्स की मेहनत का और आत्मनिर्भर भारत के सपनों का। जब हम काशी में रहते हैं तो हमें लगता है कि हम परंपरा और संस्कृति की गोद में हैं, लेकिन परंपरा के साथ टेक्नोलॉजी ही वो शक्ति है जो हमें स्मार्ट सिटी बनाती है। और देखिए ना, आज सुबह सुबह आप मुझे सुन पा रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है ना। सभी इंजीनियर्स और सभी वैज्ञानिकों को नेशनल टेक्नोलॉजी डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड नाउ बनारस, लेट्स मूव ऑन टू योर फेवरेट सेगमेंट, बात जरूरत की। देखिए, गर्मियों में तेज धूप, उमस और पसीने से स्किन पर खुजली, लाल दाने या रैशेज हो जाते हैं। लोग इसे हल्की समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार ये हीट रैश यानी घमौनियां हो सकती हैं। स्किन पर स्वेट डक्ट्स होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। इन्हें ब्लॉक होने पर पसीना स्किन के अंदर ही फंस जाता है, इससे हीट रैश होता है। इसलिए आज इस सेगमेंट में हम हीट रैश की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि हीट रैश क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं, हीट रैश के घरेलू उपाय क्या हैं? देखिए, हीट रैश एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम है। ये ज्यादा गर्मी और पसीने की वजह से होता है। इसे प्रिकली हीट, स्वेट रैश या मिलियारिया भी कहा जाता है। पसीने को स्किन की सरफेस तक पहुंचाने वाली डक्ट ब्लॉक होने पर हीट रैश होता है। इससे पसीना स्किन के अंदर जमा होने लगता है। ये दाने या रैशेस के रूप में बाहर निकलता है। हीट रैश में स्किन पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं। ये गर्मी में असहजता बढ़ाते हैं। हीट रैश, एलर्जी और फंगल इन्फेक्शन तीनों में स्किन पर दाने के साथ खुजली हो सकती है, लेकिन इनके कारण अलग अलग होते हैं। तीनों को एक एक करके समझते हैं। हीट रैश ज्यादा गर्मी और पसीने की वजह से होता है। स्किन डक्ट्स में पसीना फंसने पर छोटे लाल दाने हो जाते हैं या चुभन महसूस होती है। ये अक्सर गर्दन, पीठ, आर्मपिट यानी कि बगल या जांघों पर होता है। एलर्जी आमतौर पर साबुन, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन या फूड के रिएक्शन से होती है। इसमें लाल चकत्ते, सूजन और तेज खुजली होती है। और फंगल इन्फेक्शन फंगस के कारण होता है। आमतौर पर आर्मपिट, जांघों या पैरों की उंगलियों के बीच होता है। इसमें गोल दाने, लगातार खुजली होती है और स्किन छिल भी जाती है।
अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि हीट रैश शरीर के किन हिस्सों में ज्यादा होता है? तो ये उन हिस्सों में होता है जहां हवा कम लगती है या स्किन आपस में रगड़ती है, खासकर वो हिस्से जो कपड़ों से ढके रहते हैं या जहां पसीना ज्यादा जमा होता है। ये बच्चों और वयस्कों में अलग अलग जगहों पर होता है। बच्चों में आर्मपिट्स में होता है, कोहनी के

0: अंदर की सिलवटों पर होता है, गर्दन डायपर वाले हिस्से पे होता है, गर्दन के निचले हिस्से पर होता है, और बड़े लोगों में हाथ, पीठ और महिलाओं में ब्रेस्ट के नीचे, जांघों के बीच भी हो सकता है। इन हिस्सों में पसीना ज्यादा जमा होने से स्वेट डक्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हीट रैश होता है। कुछ लोगों को हीट रैश का रिस्क ज्यादा होता है, जैसे कि छोटे बच्चे, वो जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिन्हें ज्यादा पसीना आता है, जो गर्म क्लाइमेट में रहते हैं, जिनका आउटडोर जॉब है, जो ज्यादा धूप में रहते हैं, जो मेडिकेशन पे हैं और जिनकी स्किन सेंसिटिव है। टाइट कपड़ों से एयर फ्लो रुक जाता है, इससे स्किन तक हवा नहीं पहुंच पाती, इसके चलते पसीना ज्यादा होता है और देर से सूखता है। यही वजह है कि टाइट कपड़े पहनने से हीट रैश बढ़ जाता है। अगर रोज हम नहीं नहाते, पसीने से भीगे कपड़े लंबे समय तक पहनने रहते हैं, साफ सफाई नहीं रखते, तो हीट रैश और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अच्छा, कुछ हेल्थ कंडीशन हीट रैश होने के खतरे को बढ़ा सकती है, जैसे कि डायबिटीज में ब्लड शुगर ज्यादा रहने से स्किन की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, इससे स्किन में इन्फेक्शन और सूजन का रिस्क बढ़ जाता है, जिससे रैश जल्दी हो सकते हैं। डायबिटिक लोगों को ज्यादा पसीना आता है, जिससे हीट रैश का रिस्क ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ स्किन डिजीज में स्किन सेंसिटिव हो जाती है या सूजन हो जाती है, इससे स्वेट डक्ट्स ब्लॉक हो जाती है, ऐसी स्किन पर गर्मी और पसीना होने से रैश जल्दी बन सकते हैं। कुछ आसान घरेलू उपाय जलन खुजली कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे ठंडी पट्टी, प्रभावित हिस्से पर 5 से 10 मिनट तक ठंडे पानी में भीगे कपड़े की पट्टी रखें या बर्फ पर कपड़ा लपेट कर लगाएं, ये सूजन और खुजली कम करने में मदद करता है। एलोवेरा जेल लगाने से स्किन को ठंडक मिलती है, इससे जलन और सूजन कम हो सकती है। फ्रीज में रखे खीरे की स्लाइस प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं, इससे स्किन को ठंडक मिलती है और जलन कम हो सकती है। चंदन पाउडर में पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर लगाएं, इससे जलन और सूजन कम करने में मदद मिलती है। नीम के पत्तों का पेस्ट या नीम का तेल लगाएं, इससे स्किन को आराम मिलता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। आमतौर पर हीट रैश 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाते हैं, और अगर कुछ कंडीशंस होती हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर दाने 3 से 4 दिनों में ज्यादा समय तक बने हुए हैं, बुखार, दर्द, पस और सूजन जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो फौरन आप डॉक्टर से मिलिए और अपनी परेशानी उनसे साझा करिए, ताकि जल्द से जल्द आपका इलाज हो सके। और कुछ बातों का ध्यान रखकर हीट रैश से हम बचाव भी गर्मियों में कर सकते हैं, जैसे ढीले सूती कपड़े पहन सकते हैं, दिन में 2 बार नहा सकते हैं, पसीना गंदगी साफ कर सकते हैं, गर्मी धूप से बच सकते हैं, ठंडी जगह पर रह सकते हैं, स्किन को ड्राई रख सकते हैं, शरीर को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रख सकते हैं, ऑयली हैवी क्रीम को अवॉइड कर सकते हैं। गर्मी में होने वाला हीट रैश स्किन के ओवर हीट और केयर की कमी का संकेत है, तो थोड़ी सावधानी बरतकर इससे बचा जा सकता है।
1: बात जरूरत की।
0: सो आई होप आज गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एंड इफ यस, देन डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pkldaarvaranasi@gmail.com। मेरा नाम है सरा सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा बाय बाय एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वन डे।

गुड मॉर्निंग बनारस। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार

0: रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं,

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ, 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने कहा परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा, कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रभास पाटन में धर्म, भक्ति, देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आज सुबह 9 बजे सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्री

0: को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल लखनऊ में कहा कि राज्य को बेहतर बिजली ढांचा देने के लिए लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि सरकार ने 165 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए हैं, 59 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और 26,000 किलोमीटर से ज्यादा पारेषण लाइन का विस्तार किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृत की सराहना पर केंद्रित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध तथा कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
3: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 1,92,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रिकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले 2 दिन के दौरान मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलाव के कारण लखनऊ सहित कई जिलों में उमस भरी गर्मी शुरू हो गई है। मौसम विज्ञानियों ने राज्य में 14 मई तक एक बार फिर मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से

रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुंदेलखंड, तराई और पूर्वांचल के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा, कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन, राग है रामकली। आपके साथ हैं तबले पर दीपक गरुड़ और हारमोनियम पर विश्वनाथ कन्हेरे।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन, राग था रामकली। आपके साथ तबले पर थे दीपक गरुण और हारमोनियम पर विश्वनाथ कन्हेरे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। आप हों सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया।

0: श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल है। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
6: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष में SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
7: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की

0: स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: सुजो में एएससी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलियश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंगो पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-01-04-81 और 011-23-71-7106। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-4044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदे, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की ज़र मुबादला का तहफ्फुज़ करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हेमंत बिस्व शर्मा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाओ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के AFC एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन का कम इस्तेमाल करें और गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत करें। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के तरीके को एक बार फिर अपनाने के लिए कहा। यह राजधानी कई मुल्कों में ईंधन की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के तनाजुर में की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह अपील ऐसे वक्त की है जब खाम तेल की आलमी कीमतों में मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुरमुज में रुकावटों की वजह से इजाफा हो गया है।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों से अपील की है कि वो बेधड़क अखराजात पर गौर करें क्योंकि मुल्क को तवानाई की आलमी कीमतों के इजाफे से इक्तसादी दबाव का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शहरियों से भी कहा है कि वो खुरदनी तेल का भी इस्तेमाल कम करें। उन्होंने किसानों से जोर देकर कहा है कि वो बैरून मुल्क से दरामद की गई कीमियावी खादों पर इन्हेसार कम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में शिरकत करेंगे। ये तकरीब पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है। जनाब मोदी भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, कुंभाभिषेक रस्म अदा करेंगे और बाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। एक रोड शो का भी एहतमाम किया गया है। इस मौके पर वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी भी मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामानिकार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी जामनगर से सोमनाथ फजाई रास्ते से पहुंचेंगे। वो हेलीपैड पहुंचने के बाद एक रोड शो के दौरान आवाम को मुबारकबाद भी देंगे। इस रोड शो का इनेकाद वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक किया गया है। इसके बाद वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे पर गुलाह अकीदत नजर करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को नए सिरे से तामीर करने का तस्वुर पेश किया था। इस मौके पर भारतीय

0: फदाइया की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण सोमनाथ की फजा में एक सनसनीखेज एयर शो पेश करेगी। इस मौके पर वजीर आजम एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। वो एक खसूसी यादगारी डाक टिकट और 75 रुपये का एक खसूसी यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। सोमनाथ से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रियासत में एनडीए की लगातार तीसरी मुद्दत कार के लिए राह हमवार करते हुए मुंतखब वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया है। बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए कानून साज पार्टी का मुत्तफिक तौर से लीडर मुंतखब होने के बाद जनाब शर्मा ने इत्तेहादी पार्टियों के लीडरों के साथ लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की और बाजाब्ता तौर पर हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। गवर्नर मौसूफ जनाब शर्मा और वुजरा की कौंसिल के नए मेंबरों को कल ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब खनपाड़ा के वेटरिनरी कॉलेज प्ले ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर नितिन नवीन के अलावा दीगर मोजजीन इस में शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में वजीरों की कौंसिल की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: कल हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद हो गई, जिसके बाद अब मगरबी बंगाल की नई सरकार अपनी इंतजामिया का सफर शुरू करने को तैयार है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में अपनी पहली काबीना मीटिंग की सदारत करेंगे। इम्कान है कि मीटिंग में उन 5 नए वजीरों के कलमदान मुख्तस किए जाएं, जिन्हें कल हलफ दिलाया गया है। मुमकिन है कि दीगर महकमों के बारे में भी कोई फैसला किया जाए। जराए ने कहा है कि बीजेपी के इंतखाबी वादे एजेंडा में सरे फहरिस्त रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत, सेहत स्कीम और अन्नपूर्णा भंडार शुरू किया जाना और रियासती मुलाजिमीन के लिए 7वें तनख्वाह कमीशन पर अमल दरामद शामिल है। आज वजीर आला इंतजामिया के कामकाज की रफ्तार और नज्म व ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरीज, जिला मजिस्ट्रेट्स और सीनियर पुलिस अफसरान से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी के 9 मुंतखबा कानून साज़रकान से भी कहा गया है कि वो इस मीटिंग में शिरकत करें। कोलकाता से संदीपन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
1: इसी दौरान कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एक मुत्तहिद अपोजिशन महाज की टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी की अपील को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मोहतरमा बनर्जी ने एक वीडियो पैगाम में कांग्रेस, सीपीआईएम और इंतहाई बाएं बाजू ग्रुपों समेत सभी अपोजिशन ताकतों से जोर देकर कहा है कि वो बकौल उनके सबसे पहले दुश्मन के खिलाफ यकजहत हो जाए। कांग्रेस तर्जमान सौम्य आईच राय ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ममता बनर्जी की तरफ से इंतहाई बाएं बाजू के ग्रुपों के जिक्र और 2013 में कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ माओ नवाजों के तशद्दुद को याद करने पर सवाल उठाया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने भी इस तजवीज को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है और मोहतरमा बनर्जी को एक बदउनवान और फिरका परस्त शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी स्वपन बंदोपाध्याय ने भी कहा है कि ममता के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने उन्हें मनमाने तौर पर काम करने वाली और गैर जमहूरी शख्सियत करार दिया है। सीपीआई एमएल लिबरेशन के अभिजीत मजुमदार ने भी तृणमूल कांग्रेस को एक दाएं बाजू की तहकुमाना पार्टी कहा है। तमिलनाडु में 9 मुंतखबा असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू होगा। उबूरी स्पीकर एमवी करुपैया नए मुंतखब एमएलए को हलफ दिलाएंगे। अरकान के हलफ लेने के बाद आज या कल स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत को इस महीने की 13 तारीख से पहले अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर टेक्नोलॉजी माहिरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नौजवानों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत यकसर तब्दीली लाने वाले मुख्तलिफ इकदाम और इख्तिराई सलाहियतों को बरूएकार लाकर भारत की तरक्की को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन हर शख्स को मुल्क के अजीम सफर को मजीद तेज करने और अपनी सलाहियतों से फायदा उठाने की तरगीब देगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत अब काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत के लिहाज से दुनिया में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। مورگن اسٹینلے کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق بھارت کی قابل تجدید توانائی کی جانب منتقلی بیرون

0: మధురిమా, ద సౌండ్ ఆఫ్ మెలోడీ. మధురిమా.
1: अंतराल हुआ पूरा फिल्म संगीत के कार्यक्रम मधुरिमा में आपका स्वागत. पहला गाना तीसरी कसम फिल्म से, मुकेश की आवाज़ है, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत.

अब आइए सुनते हैं हिमालय की गोद में फिल्म से मुकेश की आवाज़ में ये गाना। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है?
1: सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ।
2: बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है।
1: पर कैसे?
2: RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान।
0: रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ।
2: बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम मधुरिमा में एक बार आपका पुनः स्वागत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और अनूप जलोटा के जुगल स्वरों में आनंद बख्शी का लिखा गाना। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है एक दूजे के लिए।

आइए सुनते हैं रंगोली फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: हीर रांझा फिल्म का गाना,
1: ये महफिल
0: मोहम्मद रफी की आवाज,
1: मेरे काम की नहीं,
0: कैफी आजमी के बोल,
1: काम की नहीं,
0: मदन मोहन का संगीत।

0: मधुरिमा।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम थोड़ी ही देर में हमारा होगा अगला कार्यक्रम।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का।
1: प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विगत 5 मई को बांदा पहुंचकर स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शिक्षा मित्र सम्मान कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के डेमो चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि
2: जो शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये कल के भारत के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, सजाने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और मैं भी अपील करता हूं, डबल इंजन की सरकार में हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सरकार की जो योजनाओं का लाभ है वो अंतिम गाँव तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, तो इस प्रदेश में रहने वाले शिक्षा मित्र भाई भी अछूते न रहे।
1: वहीं सरकार द्वारा बढ़ाए गए मानदेय को लेकर जनपद के शिक्षा मित्रों में खुशी है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों की समस्या को समझते हुए 8,000 रुपए मानदेय बढ़ाने के साथ ही 5,00,000 की कैशलेस सुविधा भी दी है, जिसको लेकर शिक्षा मित्र के मन में सरकार के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है। भीषण गर्मी के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड में इस समय पारे का कहर चरम पर है। आसमान से बरसती आग के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वैसे तो अप्रैल माह के बाद ही यहां पारा 45 के ऊपर पहुंचता था, लेकिन इस बार अप्रैल से ही अत्यधिक गर्मी की शुरुआत हो गई थी, जिसके चलते लोग घरों पर दुबक कर बैठ गए हैं और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के प्रकोप से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और बहुत मजबूरी होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों से बांदा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से तापमान में कुछ कमी आई है, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। बीते साल भी प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा बांदा जनपद का ही था। वहीं ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अस्पताल में डायरिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, खासकर बच्चे गर्मी की चपेट में अधिक आ रहे हैं। जनपद में गर्मी से निपटने के लिए प्रशासन भी चौकन्ना है। बांदा के जिला अधिकारी अमिता शेरी ने बताया कि
3: हीट वेव में जिला प्रशासन पूरी अपनी कमर कसे हुए है। पिछले कुछ समय से बांदा जिला प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का सबसे गर्म जिला उभर कर आ रहा है। लोगों ने जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल अपनी टीम्स तैयार की हैं जो उनको टेक केयर करेंगी। इसके अलावा स्कूल के टाइमिंग्स हम लोगों ने चेंज किए हैं। शहर के अंदर भी शेड और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। बहुत जरूरी हो तो ही निकलें और अपने को कवर करके लाइट क्लोथ्स में तब वहां पर जाएं।
1: जनपद में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोग और दस्तक अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत संचारी रोग से संबंधित बीमारियों जैसे मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और वायु जनित रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर उन्हें बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी व जनपद की जिला मलेरिया अधिकारी पूजा हिरवार ने बताया कि संचारी रोग अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख अभियान है। यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया गया। इस अभियान में संचारी रोग से संबंधित, जिसमें मच्छर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के साथ ही वायु जनित रोग भी आते हैं, इन रोगों से बचाव के लिए इस अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया। बांदा में साइबर अपराधियों द्वारा एक बड़ा घोटाला करने की साजिश रची गई, लेकिन बैंक मैनेजर की सतर्कता से मामला पकड़ में आ गया और इन अपराधियों की साजिश नाकाम हो गई। साइबर अपराधियों ने मुख्य विकास अधिकारी के खाते से नेट बैंकिंग के जरिए 1,68,00,000 रुपए निकालने का प्रयास किया। साइबर ठग ने अपने को DRDA का परियोजना निदेशक बताते हुए बैंक मैनेजर को मुख्य विकास अधिकारी के पैसे निकालने के लिए फोन किया। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति बैंक की शाखा में पहुंचा और खुद को विभागीय कर्मचारी बताते हुए खाते से संबंधित दस्तावेज जमा किए, जिनमें CDO समेत कई अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगी हुई थी। शाखा प्रबंधक को कागजात और प्रक्रिया पर संदेह हुआ तो उन्होंने गहन जांच शुरू की, जिसमें सभी दस्तावेज फर्जी लगे, जिसके बाद तत्काल शाखा प्रबंधक ने उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए पुलिस को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस के बैंक पहुंचने से पहले ही शातिर अपराधी वहां से फरार हो गए। बाद में DRDA के परियोजना अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV की मदद से पहचान कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है।
4: जनपद बांदा PTDRDA से प्राप्त तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम थाना बांदा में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें साइबर अपराधियों के द्वारा PTDRDA के द्वारा एक संचालित खाते को इंटरनेट बैंकिंग लेकर के खाते

0: पैसा निकालने का प्रयास किया गया है। ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों की जागरूकता और बैंक के अधिकारियों की सतर्कता तथा साइबर पुलिस के सहयोग से जो खाते में लगभग 1,68,00,000 रुपए था उसको बचाया गया है। विवेचना की जा रही, साक्ष्य संकलन कर और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके विवेचना का विधिक निस्तारण किया जा रहा है।
1: बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अम्बेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
2: अम्बेडकर नगर में ईसा प्रिया ने जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ईसा प्रिया 2016 बैच की IAS हैं। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और अन्य आवश्यक जानकारी ली। नवागत जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अच्छा अनुपालन, शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी जवाबदेह एवं जन केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं IPS अफसर प्राची सिंह ने अम्बेडकर नगर के SP पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के सफल संचालन के दृष्टिगत जनपद अम्बेडकर नगर में स्वगणना अभियान को व्यापक रूप से संचालित किए जाने के लिए जिलाधिकारी प्रमुख जनगणना अधिकारी ईसा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला समन्वय समिति तथा विभागवार नामित प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। इससे पूर्व आमजन की सुविधा के लिए 7 मई 2021 से मई 2026 तक 15 दिवसीय स्वगणना अवधि निर्धारित की गई है। इस अवधि में नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विभिन्न वर्गों तक अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभागवार निर्धारित रणनीति के अनुसार व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को डिजिटल स्वगणना से जोड़ते हुए अभियान को सफल बनाया जाए। स्वगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण में नागरिकों को https://sc.census.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश का चयन करते हुए कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन करना होगा। इसके पश्चात परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज कर परिवार पंजीकरण किया जाएगा। ध्यान रहे कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक ही परिवार के लिए किया जा सकेगा तथा पंजीकरण के बाद परिवार के मुखिया का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। द्वितीय चरण में नागरिक अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कर मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से सत्यापन करेंगे। इसके बाद जिले, गांव, नगर एवं स्थानीय क्षेत्र का विवरण भरना होगा तथा मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिन्हित करना होगा। लाल मार्कर को सही स्थान पर स्थापित कर निवास की पुष्टि की जाएगी, जिससे आवास की सटीक पहचान सुनिश्चित हो सके। तृतीय चरण में नागरिकों को जनगणना प्रश्नावली भरनी होगी। प्रश्नावली में मकान सूचीकरण एवं परिवार संबंधी आवश्यक जानकारियां दर्ज की जाएंगी। पोर्टल पर उपलब्ध आवश्यक सूचना एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQS की सहायता से प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। जानकारी भरने के बाद पूर्वावलोकन स्क्रीन पर दर्ज विवरण की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किया जा सकेंगे। पूर्ण संतुष्टि के बाद अंतिम प्रस्तुतिकरण फाइनल सबमिशन करना होगा। अंतिम प्रस्तुतिकरण के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कार्यालयों में स्वगणना हेल्प डेस्क भी बनाए जाने के निर्देश दिए।
3: जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 7 मई से लेके 21 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त जो इस जनपद के गणमान्य लोग हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है, जो माननीय गण हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है और जितने भी यहाँ अधिकारी हैं जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे, उन सबसे अनुरोध किया गया है कि वो ये इंश्योर करें कि समस्त लोग अपने सेल्फ एन्यूमरेशन को सेंसस की जो वेबसाइट है उस पे उसको फीड करके अपना सेल्फ एन्यूमरेशन कराएं। इसको हम लोग एक व्यापक अभियान के रूप में चलाएंगे और उसके बाद 22 तारीख से लेकर आगे फिर उसका एन्यूमरेटर्स के द्वारा जनगणना की कार्रवाई की जाएगी। समस्त कार्यालय इंक्लूडिंग कलेक्ट्रेट एक सेल्फ एन्यूमरेशन हेल्प डेस्क बना लें, जिसमें जो लोग ट्रेन किए गए हैं एन्यूमरेशन कराने के लिए, उनके द्वारा उस कार्यालय के समस्त कर्मचारी अधिकारियों का सेल्फ एन्यूमरेशन कराने में सहयोग किया जाए और व्यापक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें प्रतिभाग किया जाए।
2: अम्बेडकर नगर में शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया। सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के बाद जिले में 1911 शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिला है। अम्बेडकर नगर में बाढ़ आपदा से प्रभावित ढंग से निपटने, जनहानि एवं धनहानि को न्यूनतम रखने तथा राहत एवं बचाव कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ईसा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाढ़ पूर्व तैयारियां, राहत प्रबंधन, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों तथा कटान रोधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अम्बेडकर नगर में बाढ़ से प्रभावित जिन किसानों की खरीफ की फसल नुकसान हुई थी, उन्हें फसल बीमा का लाभ मिला है। जिले में लगभग 4,000 ऐसे किसान हैं जिनका नुकसान हुआ था। फसल बीमा की तरफ से इन किसानों को 53,80,000

0: रुपए वितरित किया गया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:25 और 28 सेकेंड्स हुए हैं। आइए सूचना दे दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पहली सूचना आई है कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है रेशमा बानो, इनके पिता का नाम है इसराइल। ये निवासिनी हैं ग्राम मानेपुर थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर की। ये पिछले 29 मार्च 2026 रात्रि 8 बजे से लापता हैं। रेशमा बानो के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 21 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है, इकहरा बदन। यह लापता होने के समय गाढ़ा बैगनी सलवार सूट पहने हुए थी। रेशमा बानो के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को देने की कृपा करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से ही प्राप्त एक और सूचना के अनुसार ये हैं काजल। इनके पिता का नाम है छन्ने लाल। ये निवासिनी हैं ग्राम राजेपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर की। ये पिछले 28 मार्च 2026 से रात्रि 8 बजे सुबह 8 बजे से लापता हैं। काजल के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 30 वर्ष, कद 5 फिट, रंग सांवला है, चेहरा लंबा, इकहरा बदन। ये लापता होने के समय गुलाबी रंग की समीज सूट पहने हुए हैं। काजल के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को देने की कृपा करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से ही एक और सूचना आई है। ये खोए हुए व्यक्ति का नाम है सोनी कन्नौजिया। इनके पिता का नाम है अमृतलाल कन्नौजिया। ये निवासिनी हैं ग्राम बेर्रा थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर की। यह पिछले 21 फरवरी 2026 दिन 1 बजे से लापता हैं। सोनी कन्नौजिया के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 19 वर्ष, कद 4 फीट 9 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है, इकहरा बदन। यह लापता होने के समय नीले कलर का टी शर्ट और लेगिंग पहने हुए हैं। सोनी कन्नौजिया के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को देने की कृपा करें। इसी के साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त हुईं। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सुनने वालों को शमीम का आदाब। हजरात, उर्दू अदब की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त की गर्द में दबने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ मजीद निखर कर सामने आते हैं। इन्हीं में एक नाम ऐसा है जिसने समाज के उन चेहरों से नकाब नोश डाले जिन्हें देखना दुनिया को गंवाना न था। हम बात कर रहे हैं सआदत हसन मंटो की। मंटो जिन्हें किसी ने फूहश निगार कहा तो किसी ने बागी। लेकिन आज जब हम अहद जदीद की पेचीदा मसाइल, इंसानी नफ्सियात की गुत्थियों और माशरती मुनाफिकतों का जायजा लेते हैं तो मंटो की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती है। जदीद दौर में मंटो महज अफसाना निगार नहीं बल्कि एक ऐसी खुली आंख है जो हमें सच्चाई का सामना करना सिखाती है। मंटो के किरदार आज भी हमारे आसपास सांस लेते हुए महसूस होते हैं। आज उनकी योम विलादत है और इसी को जहन में रखते हुए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है प्रोफेसर अली अहमद फातिमी को। समाप्त करिए मकाला अहद जदीद में सआदत हसन मंटो की अहमियत।
2: मंटो एक बदनाम अफसान निगार है। मंटो ने फहश और नाजुक अफसाने लिखे हैं। मंटो ने जिंसियात को आम किया। इस तरह की बदनामी सआदत हसन मंटो के हिस्से में आई जिसे अंदाजा लगाया गया कि मंटो ने महज जिंसियात पर ही अफसाने लिखे, जबकि ये बात पूरी तौर पर सच नहीं है। मंटो ने हयात और माशरे के नाजुक और पामाल मौजूआत को मिन अन पेश करने की कोशिश की। उन वाकयात अफराद तक अपने आप को पहुंचाने की कोशिश की जहां महज़ब समाज की नज़रें नहीं पहुंच सकती थीं। खोल दो, ठंडा गोश्त, टोबटैक सिंह, सौगंधी, मोजेल और दूसरे अफसाने पढ़िए। सब की सब बज़ाहिर गैर महज़ब अफसाने लगेंगे लेकिन इनकी गैर तहजीबी सूरत ही इन अफसानों का वस्फ है, फन है और फिक्र भी। अपने ऐसे अफसानों के बारे में मंटो ने खुद एक जगह कहा था, जमाने की जिस दौर से हम गुजर रहे हैं अगर आप इससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि ज़माना नाकबिल बर्दाश्त है। मुझमें जो बुराइयाँ हैं वो इस अहद की बुराइयाँ हैं। मेरी तहरीर में कोई नक्श नहीं। जिस नक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है दरअसल मौजूदा निज़ाम का नक्स है। नाहमवारियों और इंसानी जिबिलत के पेचोखम जब बाहम मुदगम होते हैं तो एक नई हकीकत जन्म लेती है और इसके बदन से रंगारंग बरहना और बेरहम हकीकतें मुंह फैलाने लगती हैं। मंटो की बारीक और दूरबीन निगाह ऐसे ही पेचीदा और बाज़ाहिर न दिखाई देने वाली हकीकतों की तरफ जाती है और मंटो उसे पूरे फनकाराना अंदाज में पेश कर देता है। हकीकतों की रास बयानी एक मुस्तहसन अमल तो है लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पेचीदा व जोलीदा हकीकतों को उसी बयान फिक्र फन के साथ पेश करना जैसा किया जाए जैसा कि मंटो करता है। जाहिर है कि यह कोई मामूली अमल नहीं। संजीदा बात को गैर संजीदा तरीके से कहना एक संजीदा अमल ज़रूर है लेकिन उस फनी हकीकत का क्या कीजिए कि उम्दा और बड़ा फन संजीदगी से पेचीदगी की तरफ नहीं जाता बल्कि पेचीदगी से संजीदगी और सलासत की तरफ जाता है, क्योंकि अच्छा और उम्दा अदब हमेशा मुश्किल से आसान की तरफ जाता है। आज से काफ़ी अरसा कबल मुमताज़ नाक़िद इबादत बरेवली ने मंटो की हकीकत निगारी पर एक मज़मून लिखा था जिसमें उन्होंने मंटो की हकीकत निगारी को जदीद मफहूम से गैर हम आहंग करार दिया था लेकिन साथ में ये भी कहा था कि ये जानते हुए कि हकीकत निगारी का तस्वुर जदीद नज़रिया से हम आहंग नहीं है, जी चाहता है कि इसको हकीकत निगारी से ताबीर किया जाए। इसी मजमून में वो लिखते हैं कि इंसान और इंसानियत की आवाज़ जगह जगह उसके यहाँ सुनाई देती है, अलबत्ता यह ज़रूर है कि वो इस ज़िंदगी के समाजी पहलू से गहरा शऊर न रखता हो। ये गलतफहमी गालिबन मंटो के इस बयान से होती है जिसमें वो साफ कहता है, मैं तहजीब व तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतार

उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम दर्जियों का है। मंटो के ऐसे तलख और शीरी बयानात ने खासी गलतफहमी फैलाई और अक्सर नकादों के कलम से वह मातूब भी हुआ। इबादत बरेलवी ये भी कहते हैं, इस हकीकत के वजूद अपनी जगह बाकी की सोसाइटी नंगी है, तहजीब व तमद्दुन बरहना है, इसको कपड़े पहनाने का काम भी अपने जिम्मे लेना चाहिए, इस काम को दर्जियों के सुपुर्द कर देना कोई अच्छी बात नहीं। इसके बावजूद मंटो हकीकत निगारी पर लिखते हुए इबादत बरेलवी ने रोमानियत और मावराइत पर बहस उठाकर खुद हकीकत शनासी के इस नए रूप का जवाब पेश कर दिया। मंटो की बेलाग और शफाक हकीकत निगारी ने बेशुमार अकायद मुसलमान तसवरात को तोड़ा है और हमें शोले हयात को बिरहना उंगलियों से छूने की जुरत अता की है। मंटो के जरिए हम पहले उन हकायक से आशना हुए जिसका सही इल्म ना हुआ तो आदमी नर्म नाजुक और आराम वकायद की महफूज तहवील में छोटी मोटी शख्सियतों की तरह जीता है। अलगरज मुद्दा यह है कि एक हकीकत वो होती है जो आदर्श और रोमानियत के दरमियान से फूटती है, एक हकीकत वो होती है जो उसूल और नजरियात से परे माशरे के अंदरून में पेवस्त होती है, जो उमूमन पहली नज़र में दिखाई नहीं देती। एक ख्याल ये है कि मंतिक और लॉजिक के बगैर हकीकत का कोई वजूद नहीं होता, लेकिन एक ख्याल ये भी है कि सच्ची और बरहना हकीकत इन दोनों से टकराती है और अक्सर मुतखालिफ रवैया अपनाकर एक अलग राह अख्तियार करती है। शायद यही वो नाजुक मोड़ है जहां मंटो तरक्की पसंद अफसाना निगारों से अलग हो जाता है और उसकी समाजी हकीकत निगारी भी मुख्तलिफ और मुनफरिद हो जाती है। जो लोग सिक्का बंद समाजी हकीकतों और इखलाकी रवैयों से अपने आप को अलग नहीं कर पाते, अक्सर वो इस बात को समझ नहीं पाते कि ज़िंदगी इतनी हसीन नहीं है जितनी कि आदर्शवादी अपने तखय्युल में सजाते हैं, हालांकि उतनी भयानक और मायूस कुन भी नहीं है जितनी बास कुनूती और अफसुदर दिल करार देते हैं। बकौल एच फॉस, सच्ची हकीकत तो इन दोनों के दरमियान एक कड़ी होती है। खलाकाना व फनकाराना हकीकत वो अदबी करिश्मा है जो इंतखाब और तख्लीक के हवालों से अपने असल रूप को कारीन के सामने पेश करती है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग तख्लीक की सतह पर हकीकत को कोरे आदर्श या कोरे आदर्श को ही हकीकत मानते हैं, लेकिन तकल्लुफ महसूस करते हैं। उसकी वजह यही है कि हकीकतों के अनेक रूप होते हैं, वो साबित होती है और सयाल भी, वो साकित होती है और फ़ाल भी। किस फन और कौन सी हकीकत, कौन सी शय अहम है और कौन सी गैर अहम है, ये तय करना भी एक मुश्किल काम होता है। बाबू गोपीनाथ, मोहम्मद भाई, ईश्वर सिंह या मंगू कोचवान, इन बुरे और मामूली आदमियों में अचानक नेकी का फरिश्ता जाग उठना और सफ़ेद पोशों का बातिन स्याह हो जाता है। शरीफ इंसान में शराफत और जलील इंसान में जलालत तो सभी देखते हैं, लेकिन बुरे से बुरे इंसान में इंसानियत और अच्छे इंसान में खबासत देख पाना और दिखला पाना एक ऐसी पेचीदा हकीकत यानी कॉम्प्लेक्स रियलिटी की तलाश है जो किसी तरह भी आसान नहीं। ये वो फेल मुहाल है जो तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ है, किरदार मर्द के हों या औरत के। मंटो के यहाँ ऐसे मामूली बिखरे और पामाल किरदारों की भीड़ है, लेकिन इसमें चौंका देने वाली बल्कि रोंगटे खड़ी कर देने वाली हकीकतों की नई दुनिया, नई गुत्थियाँ, इंसानी नफ्सियात की पेचीदा तर उलझने और अजियतें जज्ब पैवस्त हैं। मंटो की यही हयात है और यही कायनात और यही जमालियात भी। मंटो के जज्बात व फसादात और जिन्स और जिस्म को भी अलग करके देख पाना मुश्किल है। एक सच ये भी है कि मंटो की समाजी हकीकत निगारी में एक बगावत, जिद और तलखी थी। कुछ उसके जाती हालात भी ऐसे थे जिसने उसे तलख बना दिया था। कुछ ये भी कि 20वीं सदी की चौथी और पांचवीं दहाई तक पहुंचते पहुंचते क्लासिकियत और रोमानियत के खिलाफ वाकियत निगारी और माशरती हकीकत निगारी का एक नया रुझान शुरू हो चुका था। अंगारे के अफसाने, प्रेमचंद के आखिरी दौर के अफसाने वगैरह तक एक नए एहसास शऊर का बिगुल बजा चुके थे। ये अलग बात है कि नई हकीकत निगारी के इस रुझान में मंटो जाती व माशरती असबाब अवामिल मुहरिकात के बिना पर सबसे अलग था, शायद सबसे ज्यादा जाहरे और शफाक भी, जहां फर्द और माशरा दोनों की तलखियां व कमजोरियां एक हो जाएं, जिद और जुर्रत फिक्रफन का नागुजीर हिस्सा बन जाएं, वहीं फनकार का भी फर्द व माशरे के तई अमीक मुतालिया मुशाहदा
اشیاء افراد سے قریب ترین رشتہ

0: वार कर लेता है, क्योंकि वो अगर ऐसा ना करे तो अफसानेगार अपने जहन और अफसाना अपने मरकज से बिखर जाए। इसलिए कि अफसाने की शक्ल या फन मन माने ढंग से इर्तका नहीं पाते, बल्कि नफ्स अफसाना से जज्बाती गहरे तौर पर वाबस्ता होकर नमू पजीर होते हैं। किसी फन की कदर शनासी में समाज और सियासत का बिलवास्ता या बिला वास्ता दखल तो होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा उसका दारोमदार उस हकीकत पर होता है जिसे फनकार ने दोनों हवालों से अपने बातिन में जज्ब पैवस्त किया हो और फिक्र फन का हिस्सा बनाया हो। अगर कोई फनकार सही मानों में तरक्की पसंद और हकीकत पसंद है, तो उसका ताल्लुक निचले तबके और उसके किरदारों से मुखलिसाना व हमदर्दाना है, तो इस हकीकत को समझने और समझाने के बेशुमार रास्ते खुल जाते हैं। ये अलग बात है कि बाज राहें राह रास की मिसदाक होती हैं और बाज पर गुमराही का इल्ज़ाम लग जाता है, लेकिन ये दोनों हकीकतें एक ही सिक्के के दो रुख होती हैं। अब ये सवाल उठता है कि हकीकतों के इस नाजुक फर्क को किस कदर और किस तरह गिरफ्त में लिया जाए, हकीकत का सच्चा और तीखा इरफान किस तरह हासिल किया जाए। ये बहस तलब मसला है और गौर तलब भी। मंटो से मुतालिक वक़ार अज़ीम, हसन अस्करी, मुमताज़ शीरी से लेकर वारिस अलवी तक ने बड़ी जर्फ निगाही के साथ मंटो की हकीकत निगारी को समझने की कोशिश की है, लेकिन सवाल हनोस कायम है कि क्या मुकम्मल मंटो समझ में आ गए, या मंटो की तमाम हकीकतें तह दर तह आश्कार हो गईं। जिस दिन मुकम्मल मंटो समझ में आ जाएंगे, उसी दिन मंटो की मौत हो जाएगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जैसे जैसे समाज की नाहमवारियाँ, नाइतफाकियाँ, कमीनगी, हरमजदगी बढ़ती जाएगी, मंटो की तहदार और पेचदार मानवियत के दरवाह होते चले जाएंगे। बड़े फन और फनकार की यही असल पहचान होती है कि हर दौर में उसकी पहचान अपने आईने में होती है, वो हर अहद का साथ निभाता है। मंटो की अजमत का यही राज है। क्या वजह है कि आज के अफसानों में इंसान दोस्ती, हकीकत निगारी का ये रंग नजर नहीं आता और वो किरदार भी नजर नहीं आते जो सिर्फ मंटो के ही नहीं पूरे अफसानवी अदब के लाजवाल किरदार हैं? हकीकत निगारी का वो रुझान भी नहीं रहा जो मंटो और हम असरों के दरमियान था। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है कि आज के अफसानों में अमंगू कोचवान, मम्मद भाई, गोपीनाथ, कालू भंगी, घेसु माधो जैसे मर्द किरदार और धनिया, लाजवंती, सौगंधी, मुजिल, आपा जैसे औरतों के किरदार दूर दूर तक नजर नहीं आते? उर्दू अफसाने के ये सारे किरदार कहाँ गायब हो गए? क्या इस पर गौर करने की जरूरत नहीं? और इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि महज लफाजी, लफ्जों के गोरख धंधे या लम्हाती सिचुएशन पेश करने से अच्छे अफसाने और पुरअसर किरदार जन्म नहीं लेते। एक ख्याल मबनी बर हकीकत है कि आज के बेशतर अफसाने समाजी हकीकतों व पेचीदियों को नहीं, बल्कि उन लम्हाती और अक्सर सतही लम्हों का अक्स पेश करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। उर्दू अफसानों में पेचीदा समाजी हकीकत निगारी क्यों रुखसत हो गई, किरदार क्यों गायब हो गए? मंटो की समाजी हकीकत निगारी सवाल करती है। मुश्किल यह है कि इस सवाल का जवाब भी आम हकीकत, आम जिंदगी, आम जद्दोजहद को समझे और उसमें शामिल हुए बगैर नहीं मिल सकता, जैसा कि खुद मंटो जला और पिघला था और सुकरात की तरह जिंदगी का जहर पी गया था। तभी तो मुमताज़ शीरी लिखती हैं कि माशरे की बदी, बदसूरती और गंदगी को उसने बहुत करीब से देखा और जिंदगी के जहराब को इस तरह चखा कि उसकी तलखी कामोदहन से गुजर कर रगो पे में उतर गई। जिंदगी के मुशाहदे और तजुर्बात में मंटो ने अपने आप को मोमी शमा की तरह पिघलाया और जिंदगी के ऐसे पहलुओं को पूरी जुर्रत, बेबाकी और बेरहम सदाकत के साथ पेश किया जिन्हें छूने की हमारे यहाँ बहुत कम अदीबों की जुर्रत हो सकती।
1: अहदे जदीद में सआदत हसन मंटो की अहमियत। अभी आप इस मौजू पर प्रोफेसर अली अहमद फातिमी से मकाला समात फरमा रहे थे, और अब कलाम शायर के तहत समात फरमाइए आफताब अहमद अंसारी से उनका कलाम।

अभी आप मोहतरम आफ्ताब अहमद अंसारी से उनका कलाम समाअत फरमा रहे थे। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम खत्म होता है। इस प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और लखनऊ मरकज से नशर किया गया।

0: दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: अंतराल हुआ पूरा लोक संगीत में आपका स्वागत। आज के कलाकार हैं बाबूलाल यादव व साथी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में सबसे पहले ये देवी गीत।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:50 हुए हैं। लोक संगीत हम लेकर आएंगे इस छोटे से अंतराल के पार।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर

इसी के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आज के कलाकार थे बाबूलाल यादव व साथी। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं दिन में 1:45 पर और शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम झनकार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं राजा फिल्म के इस दो गाने से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर की रचना, नदीम श्रवण का

प्यार दीवाना होता है। आइए सुने इस फिल्म का गाना उदित नारायण और पूर्णिमा के बल स्वरों में। गीत रचना रविंद्र रावल की है, संगीत बाबुल बोस का।

आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर का लिखा गाना। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने, फिल्म है राजा हिंदुस्तानी।

0: जोकर।
1: अब आइए सुने उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा गाना। संगीत दिया है निखिल विनय ने, फिल्म है मुस्कान।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। अब आइए सुने बहार आने तक। इस फिल्म का गाना अनुराधा पौडवाल, पंकज उधास और साथियों की आवाज़ें, इब्राहिम अश्क के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

0: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वही हमारा साथ।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार में एक बार आपका पुनः स्वागत। आइए सुने ये दिल आशिकाना फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आइए सुने इस फिल्म का यह टाइटल सॉन्ग। उदित नारायण, सुदेश भोसले, राकेश पंडित और पूनम भाटिया और साथियों की आवाज़ें, समीर के बोल, विजू शाह का संगीत।

सावन को आने दो। आइए सुने इस फिल्म का गाना यशोदास की आवाज़ में। रचना इंदिवर की है, संगीत है राजकमल का।

अब आइए सुने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में आनंद बख्शी का लिखा गाना। तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, फिल्म है आया सावन झूम के।

मुझसे शादी करोगी, इस फिल्म का ये सुने गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें, गीत रचना अरुण भैरव के, संगीत है अनु मलिक का, और यही है कार्यक्रम झनकार की आखिरी पेशकश।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार, मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DR में 1233 किलोहर्ट्स वेव्स OTT पर, यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे सुनैना फिल्म का गीत यश दास की आवाज में। कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म सौतन में।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव 241.5 शर्मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 11:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में प्रभास पाटन सोमनाथ गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व पर उनके संबोधन का सजीव प्रसारण, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पौड़ी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं, विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी।

0: हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है, विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है, पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है, स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है, मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
1: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्ये तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbh Abhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbh Abhishek?
2: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं, लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
0: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।

0: चाहेंगे?
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगि गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। तो निराकार का अर्थ क्या है? दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पत्त हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है? क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
0: जी।
1: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है। इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
0: जी।
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफरिंग प्रेयर्स एट द हिस्टोरिक सोमनाथ तीर्थ व्हिच इज द फर्स्ट ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स, एंड टुडे द 11th ऑफ मे मार्क्स द 75th ईयर सिंस द इनॉग्रेशन ऑफ द रेस्टोर्ड टेम्पल बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर हैड गॉन टू सोमनाथ टेम्पल फॉर द सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, एंड टूडे वी आर मार्किंग द सोमनाथ अमृत महोत्सव 2026। As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
0: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार

0: प्रचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था। उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
1: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.
2: परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च।

विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च।

0: ಶ್ರೀಮದ ಭಗವತೋ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಃ ರಾಜ್ಞಯ ಪ್ರವರ್ತ ಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ.
1: ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶುತೋಷ್, ಮೈ ಆಪ್ಸೆ ಯೆ ಜಾನ್ನಾ ಚಾಹೂಂಗಾ ಕಿ ಕುಛ್ ಸಮಯ ಬಾದ್ ಯಹಾಂ ಪೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಭಿ ಹೋಗಾ ಔರ್ ಜೈಸೆ ಕಿ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರ್ ಕೆ ಧ್ವಜ ಪೆ ನಂದಿ ಜಿ ಔರ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಹೈ, ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಶ್ರೋತಾಂ ಕೋ ಥೋಡಾ ಬತಾ ದೇ.
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तुशास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है. उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहां से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं वहां से और शिखर तक, एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं. अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक पे जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है. और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है उसमें विशेष रूप से जहाँ भी कोई मंदिर होगा वहाँ त्रिशूल विशेष होगा. त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा. वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम. इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है. ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है. अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत हमें शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है. इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है. इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है. रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जो साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है. इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है.
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए. हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है. मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर. सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा. अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है. अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं. पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान हैं वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी. जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में.
1: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है सोमनाथ मंदिर में। माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति, इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed. And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petrol being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं? अ, उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में, गले

0: के कंड से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में, तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण
0: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है, अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं, तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुण ही प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिसपे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव है। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है।
2: जी, तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है, और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई, और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे, और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं, और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड Somnath Temple on the 11th of May 1951. And Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath Temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving

0: serving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat.
1: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है. जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है, ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके. और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहें, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं, वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें. अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें. जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं. ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह है अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें. और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं. यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है. और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए मंदिर. इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है. तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार.
2: जीत लिया है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the road show. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
4: आज जो संकट है उसमें हमें

0: भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: In Himachal Pradesh, six tourists lost their lives after their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district amid heavy rain and strong winds. Four others were seriously injured. After receiving primary treatment, the injured were referred to Dr. Rajendra Prasad Government Medical College. Among the deceased, five were residents of Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district. National Technology Day is being celebrated today. The day is marked to commemorate the historic Pokhran 2 nuclear tests of 1998. It aims to pay tribute to the scientists, innovators and visionaries driving the dream of an Atmanirbhar Bharat through technology, research and innovation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. In a social media post, the Vice President wished that the nation continue to make significant strides in science, innovation and technology, powered by the talent and dedication of people. Prime Minister Modi said, on this day, India recalls with pride the hard work and dedication of scientists, which led to the successful tests in Pokhran in 1998. He underlined that the government's continued focus remains on empowering talent, encouraging research and creating solutions that serve both national progress and the aspirations of citizens. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said that scientists are the true architects of the nation's pride and self-respect. Union Home Minister Amit Shah and Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh have also wished people on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the India Meteorological Department, IMD, amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है। विभिन्न अवसरों पर हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
3: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि

0: यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है, तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेके चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैसे है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
0: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
0: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है? जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूँ तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
0: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन? वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसेद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वर्लोक कहा। तो इन 3 चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 3 प्राण। जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो

0: सामग्री निकल गई, उसको आप भोज्य रूप में प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है। अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है, भले ही वो छोटा मंदिर हो, लेकिन शिवलिंग वहाँ नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग? यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है। स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं, उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है। लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है, जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी,
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले। अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता? आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है, और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि, कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, तो जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके

0: अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। इसलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयो व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें। भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
1: यस, एंड वी आर ब्रिंगिंग टू यू द Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: The Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honourable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honourable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honourable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple, and he is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर कि मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहनाकर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
0: Minister in Gujarat government, Shri Arjun Modwadia, and

0: A huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the Lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary. And as we can see, that is a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister. And yet another memento, a kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust. And the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust. And we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers. And people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशल जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्ति भाव से भरे होते हैं. तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे. और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं. और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं. और यहाँ पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है. माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से आयोजन और भी भव्य. और अब स्वागत उद्बोधन यहाँ पर.
2: विश्वनाथ चौथी वधु लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब, मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी, मारा साथी सौ मंत्रीश्रीओ, सांसद श्री सोमनाथ ट्रस्टना ट्रस्टीश्रीओ, श्री जेडी परमार, श्री पीके लहरी, श्री हर्षवर्धन नोटिया, श्री विशद भाई मफतलाल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार. विश्वना सौथी अधिक लोकप्रिय नेता अने आपड़ा लोक लाड़ीला वड़ाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी नू हूँ हृदय थी खूब खूब स्वागत करू छू. समग्र देश अने दुनिया नी नजर जे राज्य नी चूंटणी पर हती ते पश्चिम बंगाल सहित आसाम अने पोंडीचेरी में पण विकास नी राजनीति ने मड़ेला प्रचंड जन समर्थन शिल्पी यशस्वी वड़ाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब ने समग्र गुजरात की जनता जनार्दन वती खूब खूब अभिनंदन पाठवु छु. भगवान सोमनाथ नु मंदिर सदियों थी देश की आस्था संस्कृति अड़क संकल्प ने पुनर्जागरण नु जीवन प्रतीक छे. आपनी आस्था ना अजय अने अतूट प्रतीक आ मंदिर ने ध्वंस करवाना अनेक प्रयासों थया अने दरेक विनाश पछी सोमनाथ भगवान नु मंदिर फरी वधु तेजस्वता साथे उभू थयु छे. आजे आ दिव्य मंदिर विध्वंस माथी पुनर्निर्माण ना सरदार साहेब ना अड़क निर्धार दृढ़ संकल्प अने राष्ट्र ना आत्मसन्मान नु प्रतीक छे. तेमनो आ संकल्प 1951 नी 11 मे पूर्ण थयो ते गौरवशाली विरासत ने आजे 75 वर्ष थया छे. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2001માં મુખ્યમંત્રી તરીકેનું સેવાદાયિત્વ સંભાળ્યું. એ જ વર્ષે તેમણે સોમનાથ મંદિરના પુનર્નિર્માણનો સુવર્ણ જયંતિ ઉત્સવ ઉજવીને આપણને તક આપી હતી. અને આજે સરદાર સાહેબનો દ્રઢ સંકલ્પ સાકાર થયાનો આ અમૃત ઉત્સવ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબની પ્રેરણાથી દેશની આઝાદીના અમૃતકાળમાં જ આવ્યો છે તે સોનામાં સુગંધ સમો પ્રસંગ છે. આખા યુગનું નિર્માણ કરનાર વિઝનરી લોકનાયક શ્રી મોદી સાહેબે પ્રત્યેક ભારતવાસીઓમાં સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદ અને સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિના પુનર્જાગરણનો ભાવ પ્રબળ બનાવ્યો છે. આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબે અયોધ્યામાં રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ઐતિહાસિક પ્રસંગે દેશથી દેવથી દેશનું વિઝન આપ્યું હતું. સોમનાથ મંદિર પર 1000 વર્ષ પહેલા થયેલા આક્રમણ સામે શૌર્ય દાખવનાર સ્વાભિમાની યોદ્ધાઓને યાદ કરતું सोमनाथ स्वामीनाथन।

0: काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ धाम विकास, पावागढ़ में 500 वर्ष पछी ध्वजारोहण और अंबाजी कॉरिडोर तथा सोमनाथ तालीम संगल द्वारा विरासत भी विकास भी साकार कर्यु छे। अने फरीथी ज्यारे आजे गुजरात में आव्या छे त्यारे फरीथी एमनु स्वागत करीने वीरमु छू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।
1: That was the welcome address by the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, and he mentioned about the various development works that have been undertaken by the visionary leadership of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and he mentioned about the Kashi Vishwanath corridor, the Shri Ambaji temple in Gujarat, and also the Pran Pratishtha of the Shri Ram Lala temple at Ayodhya. And this is the hallmark of the government of India. And the Honorable Prime Minister is now releasing the commemorative postal stamp. And also the stamp is being now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
2: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय होंगी।
1: एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव coin. It is a 75 rupee denomination coin, and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75, with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's a beautiful replica of the Somnath Temple.
2: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
3: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा,

कला, संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में हां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत

केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल

मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ भी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है।

उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव

खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें

राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टिकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक हो

0: करना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाए जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो, साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special draw.

0: podcast, we conclude with this mantra, Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
1: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़, वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। उसके पहले ये संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। दिल बन गया।
2: एक हिस्से के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक खसूसी महापूजा में शिरकत की। उसके बाद कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण की तकरीबात हुई, जो मंदिर के तकद्दस और परचम कुशाई की रसूमात की अलामत है। हिंदुस्तानी फिजाइया के सूर्य किरण एक्रोबेटिक्स टीम ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर मुनाकिद सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान फिजाई करतब दिखाए। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस दौरान रोड शो भी किया। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष संघवी भी मौजूद थे। इसी दौरान वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत सोमनाथ संकल्प महोत्सव के अज़ीमुश्शान इनेकाद में वज़ीर-ए-आज़म योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी धाम में मुनाकिद ये इनेकाद भारत के सनातन रवायत है।
3: भगवान सोमनाथ महादेव का भव्य मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा, सुंदरीकरण और वहाँ के कार्यक्रमों के साथ ही काशी में काशी विश्वनाथ धाम,
4: महाकाल में महालोक की स्थापना का कार्यक्रम, श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्म भूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम समेत अनेक ऐसे सनातन परंपरा से जुड़े हुए पवित्र तीर्थ स्थल अपने वैभव के साथ विकास की एक नई यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
2: प्रोग्राम को गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी खिताब किया। इससे कबल वज़ीर आला और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। वहीं मेरठ के अगरनाथ मंदिर अहाते में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का इनेकाद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के प्रोग्राम को बराह रास्त देखा गया। प्रोग्राम में मेरठ कैंट के रुकन असेंबली अमित अग्रवाल और दीगर अफराद भी शामिल हुए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बुहरान के दरमियान हमवतनों से मुल्क मजबूत बनाने में शराकतदार बनने की अपील की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की कोशिशों के बदौलत हिंदुस्तान मगरबी एशियाई तनाजात की वजह से पैदा होने वाली तवानाई के बुहरान से मौसर तरीके से निमट रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियों से वो

0: साल तक पेट्रोल और डीजल का اعتدال पसंद इस्तेमाल करें, गैर जरूरी बैरूनी सफर से गुरेज करें, सोना ना खरीदें और मकामी मसनूआत को तरजीह देने जैसे इकदामात की अपील की। रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि इकदार से आरी तालीम का मुआशरे में कभी भी एहतराम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आने वाली नस्लों में इकदार को फरोग नहीं दे सकती। आज लखनऊ के विधान भवन में सहाफियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे को तहाइफ नहीं दिए जाएंगे तो वो थोड़ी देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर उसे तरबियत नहीं दी जाएगी तो वो सारी जिंदगी रोएगा। काबिले जिक्र है कि एक प्रोग्राम में जनाब उपाध्याय ने अंग्रेजी नज्मों के सितरों के हवाला देते हुए उनमें इकदार की कमी बताई। अपोजिशन ने वजीर के बयान पर तनकीद करते हुए उन्हें अंग्रेजी तालीम का मुखालिफ करार दिया। सहाफियों से खिताब करते उन्होंने कहा कि अगरचे वो अंग्रेजी या अंग्रेजी तालीम के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि तालीम ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे में कदरें पैदा करे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी काबीना में तौसी की। भारतीय जनता पार्टी के 6 रहनुमाओं ने बतौर वजीर हलफ लिया। 2 रियासती वुजरा का दर्जा भी बुलंद किया गया, उन्हें आजादाना चार्ज दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। उसके पहले ये संदेश।
3: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें
8: 0542227658
9: 0542227658 आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
10: सखियों के साथ,
11: सखियों के बाद,
10: सखियों के जज्बात,
11: गृह लक्ष्मी।
12: नमस्कार सखियों, आप सुन रही हैं आपका अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी और मैं हूं आपकी रेडियो सखी शीला।
13: और मैं हूं सुखदा। और सखियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि हमारे बच्चों ने मोबाइल और इंटरनेट से दोस्ती तो कर ली है, लेकिन कई बार शीला जी देखिए साइबर बुलिंग का शिकार भी हो रहे हैं।
12: जी हाँ सुखदा, आजकल तो बच्चे पढ़ाई, गेम और दोस्तों से जुड़ने के लिए मोबाइल और इंटरनेट का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कुछ खतरे भी हैं जिनमें से एक है साइबर बुलिंग।
13: बिल्कुल, और साइबर बुलिंग का मतलब है किसी को ऑनलाइन परेशान करना, जैसे गंदे मैसेजेस करना, मजाक उड़ाना, धमकाना, फेक फोटोज या अफवाह फैलाना, है ना।
12: और सबसे दुख की बात क्या है पता है सुखदा, पता है तुम्हें, कई बच्चे डर या शर्म के कारण अपने घर में बताते ही नहीं है कि उन्हें साइबर बुलिंग कोई कर रहा है, कोई उन्हें परेशान कर रहा है।
13: जी शीला, और ऐसे बच्चों से तो

0: मैं यही कहूंगी कि आप अपने माता पिता या अपने शिक्षकों से खुल कर बात कीजिए, और बच्चों को ये भरोसा होना चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो बिना डरे अपने घर में बता सकते हैं।
1: सही कहा आपने, और बच्चों को ये सिखाना भी जरूरी है सुखदा कि अपनी निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पासवर्ड, घर का पता या फोटो किसी अनजान व्यक्ति से शेयर ना करें।
0: और अगर कोई ऑनलाइन बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसका जवाब गुस्से में ना दें, ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए और किसी बड़े को इसकी जानकारी जरूर देनी चाहिए, है ना।
1: और सखियों, हमें बच्चों को ये भी समझाना होगा कि सोशल मीडिया पर हर बात सच नहीं होती, सोच समझकर ही कुछ पोस्ट या शेयर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि स्कूल्स में भी जो ये साइबर सुरक्षा है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए ताकि बच्चे सही और गलत का फैसला कर सकें।
1: हाँ, और अगर कोई बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो जाए तो उसे अकेला महसूस नहीं होने देना चाहिए। प्यार, समझ और सहयोग सबसे बड़ी ताकत होती है।
0: बिल्कुल सही बात कही, और जैसे कहते हैं ना कि साथ ही बच्चों को मोबाइल निश्चित समय के लिए जैसे दीजिए, जैसे 5 मिनट देखिए, 10 मिनट देखिए,
1: हाँ, उनका स्क्रीन टाइम फिक्स कर दीजिए।
0: बहुत ज़्यादा समय तक नहीं देखना चाहिए ताकि आपका बच्चा जो है मोबाइल या कंप्यूटर का जो उपयोग करे
1: उसका दुरुपयोग ना करें।
0: हाँ, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए ना। हाँ,
1: और देखिए सुखदा, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं। हमारे बच्चे चाहे तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो कार्टून देख ले, बहुत सारे गेम हैं जैसे कैरम, लूडो, फुटबॉल, बैडमिंटन, बहुत सारे गेम हैं जिसे खेलकर बच्चे अपना मन बहला सकते हैं। तो बच्चों को मोबाइल के अलावा इन सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें उन्हें दीजिए ताकि वो अपना काम जो मन दूसरी चीज़ों में लगाए,
0: है ना। आउटडोर इंडोर गेम्स वगैरह होते हैं, सब कर सकते हैं बच्चों।
1: तो बच्चों के मन बहलाने की बात तो हम कर रहे हैं
0: भाई, गेम खेलकर तो बच्चे अपना मन बहला ही सकते हैं, लेकिन हमारी जो सखियाँ हैं उनका मन बहलाने के लिए तो उन्हें एक सुंदर सा प्यारा सा गीत भी सुनवा सकते हैं, है ना।

0: शीला, आजकल की देखी ना, बढ़ती दौड़ती जो दुनिया है ना,
1: हाँ, भागती
0: जहाँ
1: दौड़ती बिजी लाइफ है
0: बहुत
1: एकदम।
0: बिजी लाइफ है और जहाँ काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो लगता है कि

0: क्या करें और क्या ना करें। तो मन और दिमाग जो होता है वो दोनों ही थक जाता है, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का हो, बच्चों को संभालना हो, या इसके अलावा और बहुत सी परेशानियां होती हैं हम सखियों को।
1: सही कहा आपने। और ख़ास तौर पे कामकाजी महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा दबाव रहता है कि उन्हें एक निश्चित समय पे घर के काम पूरे करके फिर ऑफिस में भी अपना समय देना होता है और वहाँ भी अच्छा करना होता है,
0: बिल्कुल।
1: तो एक तरह से तनाव तो हो ही जाता है।
0: तो हम महिलाओं को झेलनी पड़ती है जो जितनी सारी जो परेशानियां होती हैं। तो क्यों ना आज शिला, आज हम इसी बात पर आधारित सखियों को सुनवा देते हैं डॉक्टर उपासना राय और आकांक्षा सिंह की ये बातचीत, जिसका विषय है महिलाओं में तनाव प्रबंधन।
1: तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत।
2: सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव होना एक आम सी बात हो गई है, लेकिन जब ये तनाव एक हद से ज्यादा बढ़ने लगता है तब वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तनाव कहिए, डिप्रेशन कहिए या अवसाद, उचित प्रबंधन करके इससे बचा जरूर जा सकता है। आज हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर उपासना राय। आइए उनसे जानते हैं क्या तनाव डिप्रेशन से बचाव किया जा सकता है, किस तरह। उपासना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद मैम।
2: उपासना जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये तनाव ये है क्या?
3: अगर समझा जाए तनाव, तो तनाव एक प्रतिक्रिया है जिससे शरीर अपने दैनिक दिन भर में जो भी आपके साथ घटनाएं होती है उस पर शरीर कैसे रेस्पॉन्स करता है, वही तनाव है। तो तनाव सकारात्मक भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। जैसे कि हमें पता है कि हमें ये काम इतने बजे तक करना है, या हमें इतने बजे ऑफिस जाना है, या ये एक टास्क इतने बजे तक खत्म करना है, इतने दिन में डेडलाइन है, तो वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है जो कि हमें मोटिवेट करता है कि हमें काम खत्म करना है। और एक होता है नकारात्मक स्ट्रेस, जो कि अगर कोई स्ट्रेस लंबे समय तक है या उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, तो वो हमारे शरीर में और हमारे मानसिक स्थिति में बहुत खराब असर करता है, तो वो कहते हैं नकारात्मक स्ट्रेस। तो हमें यही समझना है कि तनाव कब तक सकारात्मक है और कब वो ज्यादा हो गया है, तो इससे वो नकारात्मक स्ट्रेस में आ जाता है।
2: अच्छा, एक सर्वे के अनुसार महिलाओं में तनाव और डिप्रेशन ज्यादा है, ऐसा क्यों?
3: जी मैम, सही आपने बताया। फिर एक WHO की स्टडी हुई जिसमें देखा गया है कि महिलाओं में लगभग दुगना एंग्जायटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स और बीमारी देखी गई है पुरुष के कंपैरिजन में
2: जी।
3: तो इसके कई सारी रीजन है। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल, मतलब हमारे शारीरिक जो बनावट है हमारी, जैसे कि हमारे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हमें कहीं ना कहीं पुरुष से ज्यादा रिस्क पे लाता है। महिला जिस जिस स्टेजेस से गुजरती है लाइफ में, जैसे कि मान लीजिए एक एक बार जब हमें मासिक आता है, महीना आता है, या जब एक औरत गर्भवती होती है, या जब डिलीवरी होती है, या जिस समय वो बच्चा पाल रही होती है, या फिर जब पोस्ट मेनोपॉजल टाइम भी आता है, तो वो हर एक क्षण में महिला एक रिस्क पे होती है एंग्जायटी और डिप्रेशन के, क्योंकि जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो उसको एट रिस्क बनाते हैं।
2: उपासना जी, क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों होता है महिलाओं के साथ? क्या वो इमोशनली ज्यादा सेंसिटिव होती हैं या वीक होती हैं, क्या कहेंगे हम?
3: इमोशनली वीक तो क्या कहा जाए, लेकिन हाँ, जैसे महिला में बहुत सारे रोल सोसाइटी में प्ले करने होते हैं। जैसे उसको अपने घर का तो पहले जो काम करना है वो करना ही है, उसको अपने एज अ माँ अपना कर्तव्य निभाना है, अपने एज अ वाइफ अपना कर्तव्य निभाना है, एक अच्छी बहू बन के आना है, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं जिसको हम सोसाइटी में या अपने परिवार के मीट करने हैं। उसके अलावा आज की महिला क्योंकि बाहर भी जाती है, बाहर भी काम करती है, तो उसको बाहर का भी पूरा लेके चलना है, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा ऐसा फील करती है कि मैं अपना रोल जो है वो पूरा अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रही हूँ, क्योंकि इतना कुछ है और समय का अभाव पड़ जाना या सबका एक्सपेक्टेशंस पे, उसको हमेशा एक चीज में रहता है कि मैं पूरा एक बेस्ट, शायद एक बेस्ट नहीं वाइफ बन पा रही हूँ, या अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या अपने सास ससुर के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, या काम पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। तो एक जो ड्राइव है कि हमें चीज में बेस्ट करना है या एकदम परफेक्ट बनना है, उस वजह से कहीं ना कहीं वो एक जो हमेशा लगना कि नहीं हो पा रहा सही से, उस वजह से वो कहीं ना कहीं तनाव में चले जाती है।
2: उपासना जी, अगर लक्षणों की बात कहें तो अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या तनाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो लक्षण किसे हम माने?
3: तो कई सारे लक्षण होते हैं तनाव की, अगर मैं बात करूं इन जनरल, तो शारीरिक लक्षण की बात करूं, जैसे कि शरीर हमेशा थका थका लगना, धड़कन महसूस होना तेज तेज, मुंह सूख जाना, हाथ पैर थरथराना, शरीर हमेशा दर्द होना या कमजोरी जैसा लगना, सुबह उठते ही शरीर बहुत भारी है जैसे बेड पे पड़े रहे, या अगर मानसिक लक्षणों की बात करें तो जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाना, मन हमेशा फीका फीका उदास लगना, हंसने का मन ही ना करना, लोग भी कहें जैसे रौनक है चेहरे पर, वो रौनक नहीं दिख रही है, जो जो चीजें पहले बहुत आपको अच्छी लगती थी, बहुत रुचि थी, अब उन सब में रुचि खत्म होते जा रही है, बहुत मूड ऊपर नीचे मन हो रहा है, या हमेशा कोई ऊर्जा कुछ नया करने की इच्छा नहीं हो।

0: तो शारीरिक कई सारी बीमारी भी मानसिक बीमारी के साथ आ जाती है लंबे समय तक अगर उसे ध्यान ना दिया जाए तो।
1: बिल्कुल उपासना जी, ये बताइए कि तनाव से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं?
0: तो तनाव से बचने की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें एक नियमित एक्सरसाइज, योग, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप आधे घंटे 20-25 मिनट भी अगर आप योग करते हैं, योग नहीं अगर आपसे हो पा रहा है तो आप अगर ब्रिस्क वॉक, मतलब जिसको कहते हैं तेज गति में चलना
1: जी,
0: अगर वो करते हैं, या जॉगिंग करते हैं, या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे नेचुरली बॉडी में वही सेरोटोनिन, एक हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है जिससे मन अपलिफ्ट होता है। उसके अलावा अपने खान पान पर हमें ध्यान देना है, जिसमें आता है हरी सब्जियां, फल और नट्स जैसे कि बादाम, खजूर, इन सब में भी सेरोटोनिन इससे भी रिलीज होता है। तो अपना खान पान पर भी हमें ध्यान देना है, कार्बोहाइड्रेट्स और तेल के सामान, ऑयली सामान को कम से कम प्रयोग करना है। इसके बाद आता है एक अच्छी नींद, जिसको हम कहते हैं 6 से 8 घंटे तक एक बराबर अच्छी नींद रात की, ये भी नहीं कि दिन में 2-4 घंटे रात में, ऐसे नहीं, एक लगातार रात की 6 से 8 घंटे नींद बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपने सोचने के तरीके को हमको चेंज करना पड़ेगा, जो कि सबसे कठिन है और सबसे महत्वपूर्ण है लॉन्ग टर्म के लिए।
1: जी,
0: मतलब हमें पॉजिटिव आउटलुक लेके चलना है, जैसे चीजों के बारे में अच्छा सोचना। अगर आप खुद ही अगर सोचे, कोशिश करिए कि अगर आप सुबह से शाम तक सिर्फ चीजों में कमियां निकालिए, आज हमारे साथ सुबह ये दिक्कत हुआ, आज अलार्म नहीं बजा, आज घर से निकलने में लेट हो गया, आज ऑफिस में लेट हुआ, ये इसने अच्छे से बात नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, तो शाम आते आते आप मेंटली ड्रेन्ड हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपका मन खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ा बनाने लगेगा, शरीर भारी भारी लगेगा। एक दिन आप शुरू हो करिए दिन अपना सिर्फ अच्छाइयां सोचिए कि आज अच्छे से ये हो गया, आज हम समय से पहुंच गए, आज हमारा ये बढ़िया बना, आज नाश्ता बड़ा अच्छा बना था, आज सबने ये किया, आज आप किसी को देख के मुस्कुरा दिया, सामने में किसी ने देख के स्माइल कर लिया। एक सिर्फ चीजों में अच्छाई खोजिए कि हमारे साथ ये अच्छा है, हमारी नौकरी मिल गई, ये सही हो गया, ये अच्छा हो गया, सिर्फ अच्छाई खोजने की कोशिश करिए, आपका अपने आप मन अच्छा हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव आउटलुक लेके चलना है, क्योंकि आप कमियां खोजेंगे तो कमियां हर जगह है, तो जो अच्छाइयां हैं, जो भगवान ने दिया है, जो आपने अच्छा किया है, एक किसी को भी दिन में खुश कर दिया आपने, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो गई। तो एक पॉजिटिव आउटलुक लेके कोशिश करिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप 24 घंटे में आप बहुत काम कर रहे हैं, अपने घर को समय दे रहे हैं, आप अपने काम को समय दे रहे हैं, आप पेट भरने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन में 20-25 मिनट निकालिए जिसमें आप अपने लिए समय दीजिए। मतलब कोई भी ऐसा काम करिए जिससे आपको खुशी मिले, वो कोई भी चीज हो सकती है। ऐसी कोई चीज सोचिए जो आप पहले बहुत करते थे, अब आप छोड़ते चले गए क्योंकि आप इतने काम में घुसते चले गए। वो कुछ भी हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकता है, वो कोई म्यूजिक से रिलेटेड हो सकता है, वो प्लांटेशन हो सकता है, कोई अच्छा खाना बनाना हो सकता है, कोई बेकिंग का कोर्स हो सकता है, कुछ नहीं तो एक कॉमेडी शो देखना हो सकता है, वो एक पिक्चर के एपिसोड रोज देखना हो सकता है। तो 20-25 मिनट कोई ऐसा काम जिससे आपको खुशी मिले आप करिए, क्योंकि आप करेंगे आपको खुशी मिलेगी तो अपने आप सेरोटोनिन रिलीज होगा, जो कि हम दवाइयों में देते हैं। तो इस प्रकार से अपना रूटीन बनाइए कि आप काम जरूर करिए लेकिन अपने लिए समय जरूर निकालिए। और अगर आप कामकाजी महिला है तो भी आपको काम में आप आते हो तो उसके लिए टाइम होना चाहिए, इतने से इतने बजे तक मुझे काम करना है, अपने आप को बीच में ब्रेक देना है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, ऑफिस का काम घर में नहीं, घर का काम ऑफिस में नहीं, एक बैरियर करना है, प्रॉपर ब्रेक लेना है, छुट्टियां जरूर लेनी है जितने आपके हक की हैं। तो इस तरीके से एक बैलेंस आज के समय में बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल उपासना जी, चलते चलते महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप?
0: महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अब आप अपने लिए खुद बोलना शुरू करिए, अब आप खुद उठ के आइए, दूसरों पे अब डिपेंडेंट मत होइए। अगर आपको किसी भी प्रकार का तनाव है, किसी भी चीज से दिक्कत हो रही है, तो ये मत सोचिए लोग क्या सोचेंगे, आप अपने आप को समय दीजिए। अगर आपका पूरा दिन आप अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने सास ससुर, अपने काम को दे रहे हैं, तो प्लीज अपने लिए समय भी निकालिए और आप आगे आइए। और इस दौड़ से आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए कि मुझे एक परफेक्ट हर रोल परफेक्ट अदा करना है, क्योंकि वो हर हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। तो आप हर रोल परफेक्ट नहीं कर सकती, जितना आप इस चीज में जाती जाएंगी, एक अभाव के प्रति आप सोचते सोचते आप और तनाव में जाएंगी। तो अपने लिए समय दीजिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य को समय दीजिए।
1: डॉक्टर उपासना राय, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी बातचीत, विषय था महिलाओं में तनाव प्रबंधन। डॉक्टर उपासना राय से बात कर रही थी आकांक्षा सिंह।
3: बिल्कुल, अब तो चलते हैं शीला किचन की ओर, चूंकि गर्मी बहुत है तो हाँ। आज अपने सखियों को बताते हैं ठंडी ठंडी कोकोनट कुल्फी, है ना?
2: सखियों, तो कागज और कलम निकाल लीजिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कोकोनट कुल्फी। और इसके लिए सामग्री है कच्चा नारियल 1 कप, मलाई वाला कटा हुआ कच्चा नारियल चाहिए, और गाढ़ा दूध 3/4 कप, ताज़ा क्रीम 1 कप, दूध पाउडर 3/4 कप, और सूखा नारियल 1/4 कप यानी कि 1/4 कप, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, और स्वाद के अनुसार चीनी।
3: बिल्कुल, और इसके बनाने के तरीके

0: करके भी बहुत ही आसान है कि नारियल का नरम गूदा निकालें और उसे मोटा मोटा काट लें। ब्लेंडर में नारियल का गूदा, ताजी क्रीम, गाढ़ा दूध, सूखा नारियल और मिल्क पाउडर डालें। तब तक प्लेट करें जब तक कि एक चिकना और गाढ़ा मिश्रण न तैयार हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला दें। मिश्रण को कुल्फी के मोल्ड, मतलब उसमें
1: कुल्फी
0: अगर आप
1: वाले सांचे में
0: वो डालते हैं, लेकिन चीनी भी तो डालना है।
1: अच्छा हाँ
0: चीनी डाल दीजिए और कुल्फी वाले सांचे में डालकर एल्यूमिनियम फॉयल पेपर से ढककर उसको स्टिक करके 6 से 8 घंटे फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीजर में लीजिए, तैयार है आपकी गर्मा गर्म कोकोनट कुल्फी।
1: ठंडी ठंडी कुल्फी। और देखिए सखियों, मन को ठंडा रहता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है और सब कुछ करने का मन करता है और आसपास का वातावरण सही रहता है। तो अपने घर को भी हरा भरा रखिए और अच्छे अच्छे पौधे लगाइए, फूल लगाइए और गमलों को भी आप चाहे तो नए नए तरीकों से सजा के उसे आकर्षक लुक दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, कहते हैं ना कि पुरानी वस्तुओं का भी पुनः उपयोग करें, जैसे पुराने डब्बों को पेंट करके या उन पर रस्सी लपेट कर हैंगिंग प्लांट लगाइए और पेंट के ऊपर वार्निश या कोटिंग स्प्रे का उपयोग करें ताकि रंग के कारण जो है आपका खराब ना हो, जो डब्बा है या आपका जो गमला जो आपने तैयार किया है,
1: या फिर रंग बिरंगी कई सारी बाल्टी होती है तो उसको कंट्रास्ट में यूज करिए। एक-एक कंट्रास्ट वाइज उसको एक पंक्ति में लगाइए, देखिए वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा।
0: भाई शीला जी, देखिए बात करते करते तो समय का पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब घड़ी की सुई भी इशारा कर रही है, तो हम अपने सखियों से अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों के बाद,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658,
4: 0542227658।
0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं बाबूलाल यादव और उनके साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए ये दादरा।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे बाबूलाल यादव और उनके साथी। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 2 बजे आप सुनेंगे समाचार, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds. Projects growth at 6.6% in the current fiscal. And in IPL cricket, Punjab Kings to take on Delhi Capitals in Dharamshala this evening. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. The Mahapuja marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the Somnath Temple stands as a beacon of unwavering faith, divinity and a sacred symbol of the country's eternal soul. He said, Somnath Amrit Parv is not just a festival to celebrate the past. It will be the country's inspiration for the next 1,000 years.
2: आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: The Prime Minister said Somnath reminds the people that any nation can remain strong.

0: occasion. India Meteorological Department, IMD, has forecast isolated thunderstorms, lightning and gusty winds over northwest parts of the country till Thursday. Isolated hailstorm activity is also likely to be experienced in Jammu Kashmir, Ladakh, today and tomorrow. The weather agency has said that Himachal Pradesh and Uttarakhand are also expected to experience similar conditions tomorrow. Meanwhile, the Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and the day after tomorrow. In IPL cricket, Punjab Kings will face Delhi Capitals at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamsala this evening. The match will begin at 7:30 p.m. In football, India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continued to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat Jiramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ भी प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत भारत केवल

0: आजाद नहीं हुआ है। भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
0: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 दिन के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा

0: वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
4: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज 2 मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं।

0: उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए। हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न।

0: हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
1: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
1: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
1: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes sir, we have seen.
4: I have seen sir.
5: I like bicycle sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink
9: and mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: Do it again, please.
3: Trin, trin, trin!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat is blue in color.
2: The tires and pedals are black.
3: The tires and pedals are black.
2: Sometimes fast. Sometimes slow. But my bicycle is always on track.
3: To keep my bicycle moving.
2: All I need is some air. I put on my little helmet.
6: And I go happily everywhere.

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था।

0: वी एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा,

0: इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
0: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म वंश का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म माँ और ममता से। आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: जी हाँ श्रोताओं, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस AIRVNS@gmail.com। जी हाँ श्रोताओं, अब आप मेल के जरिए भी

0: अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने सुन सकते हैं। प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में आकाशवाणी वाराणसी से हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, यानी इस मेल पर आपको अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचानी है। AIRVNSFGEXP@gmail.com। तो अब खतों, फोन इन, व्हाट्सएप और SMS के बाद अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाइए मेल के जरिए भी, और सुनिए फरमाइशी गीत एक्सप्रेस प्रोग्राम। तो अब हम हैं आपके साथ हर घड़ी, हर पल और हर प्लेटफॉर्म पर, आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस,
1: मीडियम वेव 241.5 चैन मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का प्रोग्राम युवा वाणी।

0: तरंगों पे चलती बातें एहसासों का कारवां है। रेडियो सिर्फ आवाज नहीं, दिलों के बीच आसमां है।
1: तकनीक और इंटरनेट ने दुनिया को यूं जोड़ा है, अब हर दूरी के पीछे बस एक छोटा सा जहां है।
0: कभी सोचा है आजकल इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखता है?
1: अरे, भगवान का नाम या फिर मोबाइल का स्क्रीन टाइम।
0: सच बताऊं तो आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल ही देखते हैं, अलार्म से लेकर ऑनलाइन क्लास, टिकट बुकिंग, खाना ऑर्डर करने तक सब कुछ तकनीक के भरोसे ही तो है।
1: बिल्कुल, और मजे की बात यह है, अब तो दादी नानी भी वीडियो कॉल पर हालचाल पूछ लेती हैं, और छोटे बच्चे मोबाइल चलाना बड़ों से पहले सीख जाते हैं।
0: सही कहा, कभी चिट्ठियां हफ्तों में पहुंचती थी और आज एक क्लिक में फोटो, आवाज और वीडियो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाती है।
1: यानी तकनीक ने सिर्फ मशीनें नहीं बदली, हमारी पूरी जिंदगी का अंदाज बदल दिया।
0: लेकिन क्या तुम्हें पता है कि भारत की तकनीकी यात्रा में एक ऐसा दिन भी आया था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान हमारी ओर खींच लिया था? हाँ हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, ठीक वैसे ही जैसा कि अभी आपका ध्यान हमारे ऊपर है। हाँ भाई, आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये दो दोस्त आखिर हैं कौन, है ना? अजी तो अपनी मृग तृष्णा को अब दीजिए विराम, क्योंकि कार्यक्रम में जानकारियां और मनोरंजन का गुलदस्ता प्रस्तुत करने से पहले स्वीकार कीजिए अपने ये दोस्त सौरव
1: और नेहल का
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658।
4: तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, आज का दिन सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि उस सोच का दिन है जिसने भारत को उपभोक्ता से निर्माता बनने की ताकत दी।
5: बिल्कुल सौरभ, क्योंकि आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं बल्कि देश के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की पहचान भी है।
4: दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1999 में हुई थी
5: और इसकी सबसे बड़ी वजह बना था भारत का वो ऐतिहासिक पल जब 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किए थे। इस अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति।
4: जी हाँ, उस समय भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वह विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र

0: क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सक्षम राष्ट्र है।
1: और सिर्फ परमाणु परीक्षण ही नहीं, उसी दिन भारत ने स्वदेशी विमान हंसा 3 का सफल परीक्षण भी किया था। साथ ही रक्षा अनुसंधान में बनी त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण हुआ था।
0: यानी कि 11 मई सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि कई वैज्ञानिक सफलताओं का प्रतीक बन गया है दोस्तों।
1: दोस्तों एक और रोचक बात, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने बेहद कम लागत में अंतरिक्ष मशीनों का सफल बनाया। चंद्रयान और मंगलयान इसकी शानदार मिसाल है।
0: सही कहा, खासकर मंगलयान मिशन इतना किफायती था कि लोग मजाक में कहते थे, हॉलीवुड की कई फिल्मों से भी कम बजट में भारत मंगल तक पहुंच गया।
1: और आज तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल पेमेंट, मौसम की जानकारी, खेती में नई मशीनें, अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी, हर जगह तकनीक हमारी मदद कर रही है।
0: लेकिन दोस्तों तकनीक का सही उपयोग भी उतना ही जरूरी है। अगर तकनीक ज्ञान दे सकती है तो उसका गलत इस्तेमाल भ्रम और खतरा भी पैदा कर सकता है।
1: बिल्कुल, इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें सिर्फ नई खोजों का जश्न मनाना नहीं सिखाता बल्कि जिम्मेदारी के साथ तकनीक अपनाने की सीख भी देता है।
0: और आज के दिन हम उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को भी सलाम करते हैं जिनकी मेहनत से भारत लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है।
1: तो आइए हम भी संकल्प लें कि तकनीक का उपयोग देश और समाज को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। विज्ञान की सोच, तकनीक का साथ, इसी से मजबूत बनेगा भारत का भविष्य और विश्वास।
0: दोस्तों तकनीक इंसान को तेज जरूर बनाती है लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है, क्या हम सिर्फ मशीनों से आगे बढ़ रहे हैं या फिर अपनी सोच से भी?
1: वाह, और शायद इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है महान दार्शनिक और चिंतक जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचारों में, जिनकी जयंती आज मनाई जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, 11 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में जन्मे जे कृष्णमूर्ति दुनिया के उन विचारकों में गिने जाते हैं जिन्होंने लोगों को स्वतंत्र सोच की शक्ति समझाई।
1: उनकी सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने कभी अंधविश्वास या बिना सोचे समझे किसी बात को मानने पर जोर नहीं दिया। वे कहते थे, सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता किसी एक विचारधारा से नहीं बल्कि स्वयं को समझने से होकर जाता है।
0: और दोस्तों आज के डिजिटल दौर में उनके विचार और भी ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं क्योंकि आज जानकारी तो बहुत है लेकिन सही सोच और समझ सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल, जे कृष्णमूर्ति मानते थे कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं बल्कि ऐसा इंसान बनना है जो डर, लालच और संकीर्ण सोच से मुक्त हो।
0: यही कारण है कि उनके विचार आज भी दुनिया भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और युवाओं को प्रेरित करते हैं।
1: तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस अवसर पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि तकनीक तभी सार्थक है जब उसके साथ मानवीय संवेदनाएं और सही विचार भी जुड़े हों। नई तकनीक के साथ नई सोच भी जरूरी है क्योंकि उज्जवल भविष्य सिर्फ मशीनों से नहीं समझदारी से बनता है।
0: समझदारी से याद आया दोस्तों, कभी लोग कहते थे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पालो लेकिन आज की दुनिया कहती है अपने सपनों को दुनिया के किसी भी कोने तक ले जाओ। जी हाँ दोस्तों, आज करियर की उड़ान सिर्फ अपने शहर या देश तक सीमित नहीं रही बल्कि युवाओं के सपने अब विदेशों की यूनिवर्सिटीज, मल्टीनेशनल कंपनियों और ग्लोबल अवसरों तक पहुंच चुके हैं। तो आइए सुनते हैं वार्ता एक ऐसे विषय की जो आज के युवाओं की सोच, संघर्ष और महत्वाकांक्षा तीनों से जुड़ा है। विषय है विदेशों में करियर, अवसर, चुनौतियां और संभावनाएं।
2: नमस्कार, मैं शुभम राय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शोधार्थी, आज आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो आज के समय में लगभग हर युवा के मन में जरूर आता है। जब

भी हम अपने भविष्य और अपने सपनों के बारे में सोचते हैं तो एक विचार अक्सर हमारे मन में आता है, क्या हमें आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहिए? इसी सवाल और इसी सोच से जुड़ा हुआ आज का हमारा विषय है, विदेशों में पढ़ाई के अवसर और उनके जुड़ी चुनौतियाँ। श्रोताओं, समय बदल रहा है और उसके साथ बदल रही है हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताएं और हमारे सपनों की उड़ान। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सीमाएं केवल नक्शों तक सीमित रह गई हैं और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। कभी ऐसा समय था जब शिक्षा का अर्थ अपने शहर या अपने देश तक ही सीमित था, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। जब एक छोटे से गाँव का छात्र भी बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है और उन सपनों को साकार करने के लिए वह दुनिया के किसी भी कोने तक जाने को तैयार है। इसी सोच के साथ आज का युवा केवल डिग्री नहीं चाहता, वह कुछ नया अनुभव चाहता है और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता है। हर वर्ष लाखों छात्र अपने मन में उम्मीदों का दीप जलाकर अपने परिवार की अपेक्षाओं को साथ लेकर और अपने मेहनत के सहारे विदेशों की ओर कदम बढ़ाते हैं। और अगर हम देखें तो छात्र ऐसे देश की ओर रुख करते हैं जहाँ अपने विषय में उन्हें बेहतर सीखने और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, जैसे कुछ देश अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जो अपनी शिक्षा के लिए ही जाने जाते हैं वहाँ छात्र जा सकते हैं। वहीं इन देशों के कुछ विश्वविद्यालय जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो अपनी अच्छी शिक्षा और शोध के लिए जाने जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, यह सफर जितना आकर्षक और सुनहरा दिखाई देता है उतना ही यह जिम्मेदारियों और चुनौतियों से भी भरा हुआ होता है। विदेश में पढ़ाई केवल एक सपना नहीं है, यह एक निर्णय होता है जिसमें उत्साह के साथ साथ समझदारी, आत्मविश्वास के साथ साथ धैर्य और आकांक्षाओं के साथ साथ तैयारी की भी आवश्यकता होती है। तो आइए आज हम इसी विषय को थोड़ा और करीब से समझने का प्रयास करते हैं कि विदेश में पढ़ाई आखिर क्यों एक आकर्षक अवसर बनती जा रही है और इसके साथ कौन सी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। श्रोताओं, जब हम विदेश में पढ़ाई की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न जरूर आता है, आखिर ऐसा क्या है जो विद्यार्थियों को अपने देश से बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है? इसका उत्तर केवल एक नहीं बल्कि कई पहलुओं में छिपा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान और अध्ययन के अवसरों की। तो विदेशों में कई ऐसे विषय और पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं जिनमें गहराई से अध्ययन करने और शोध करने के बेहतर अवसर मिलते हैं। वहाँ विद्यार्थियों को केवल पढ़ाया ही नहीं जाता बल्कि उन्हें समझने, सोचने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। कई बार छात्र ऐसे विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं जो नए और उभरते हुए नए युग से जुड़े हुए थे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऐसे विषय में विदेशों में गहराई से पढ़ने और शोध करने के अधिक अवसर मिलते हैं जिससे छात्र इस क्षेत्र में बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। इसके साथ ही वहाँ का वातावरण भी एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में भूमिका निभाता है। जैसे एक छात्र जब एक अलग अलग देशों के विद्यार्थियों के साथ बैठकर पढ़ता है तो वह केवल पढ़ाई ही नहीं करता बल्कि उनके साथ उनके अनुभव और उनकी सोच और उनके जीवन के नजरियों से भी सीखता है। यह अनुभव उसे एक नई दृष्टि देता है, एक ऐसी दृष्टि जो सीमाओं से भी परे होती है। श्रोताओं, विदेशों में पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वहाँ जाने वाले विद्यार्थी नवाचार भी सीखते हैं। विदेशों में छात्रों को यह स्वतंत्रता मिलती है कि वे अपने विचार को खुलकर व्यक्त करें, नई चीजों का प्रयोग करें और कुछ अलग करने की कोशिश करें, और यही स्वतंत्रता कई बार नए आविष्कारों और नए सोच को भी जन्म देती है। और अगर अब हम बात करें कैरियर के अवसरों की तो आज के समय में दुनिया एक वैश्विक बाजार बनते जा रही है। ऐसे में छात्र के पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव होता है तो कंपनियां अक्सर उनको अधिक उपयुक्त मानती हैं। और अब हम बात करते हैं करियर के अवसरों की तो आज के समय में दुनिया एक वैश्विक बाजार बन चुकी है। ऐसे में छात्र जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव होता है अक्सर कंपनियों के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। विदेशों में पढ़ाई से विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान मिलता है बल्कि वे अपने क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव को भी प्राप्त करते हैं जो उनके भविष्य को और मजबूत बनाता है। इसके साथ ही विदेशों में रहने से एक और बड़ा परिवर्तन आता है और वह है आत्मनिर्भरता। जब एक छात्र अपने घर परिवार से दूर रहता है और एक नए देश में रहता है तो वह अपने हर छोटे बड़े निर्णय स्वयं लेना सीखता है। समय का प्रबंधन, पैसों का संतुलन और जीवन की जिम्मेदारियां, ये सब उसे धीरे धीरे एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति बना देते हैं।

0: लेकिन श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हर उजाले के साथ कुछ छाया भी होती है। ठीक उसी तरह विदेशों में पढ़ाई से इन अवसरों के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक पहलू, क्योंकि विदेशों में पढ़ाई और वहाँ रहना दोनों ही काफ़ी खर्चीले होते हैं, और वहाँ की फीस, वहाँ रहने का खर्चा, वहाँ की भोजन और अन्य आवश्यकताएं, इन सब का संतुलन बनाना आसान नहीं होता। हालांकि कई छात्रवृत्तियां और सहायता योजनाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए पहले से ही योजनाएं बनाना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है घर से दूरी, क्योंकि हम सभी अपने परिवार के बीच रहते हैं, जहां हर खुशी और हर परेशानी में हमें एक दूसरे का साथ मिलता है। लेकिन जब एक छात्र विदेश जाता है तो उसे इस सहारे से दूर रहना होता है, जैसे त्योहारों की रौनक, घर का माहौल, माँ के हाथों का खाना और अपनों का साथ, और कई बार यह याद अकेलेपन का भी एहसास कराती है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है नई संस्कृति में खुद को ढालना। हर देश की अपनी परंपराएं और अपना जीवन जीने का अलग-अलग तरीका होता है। शुरुआत में यहाँ सब नया और थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे छात्र इसे अपनाना सीख जाते हैं। और बात करें भाषा की, तो यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। यदि भाषा में सहजता ना हो तो पढ़ाई और दैनिक जीवन दोनों ही काफी हद तक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई का दबाव, नई जिम्मेदारियां और अकेलापन, यह सब मिलकर छात्र को मानसिक तनाव भी पैदा कर सकते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि छात्र केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी इस यात्रा के लिए तैयार हो। उन्हें चाहिए कि वे पहले से जानकारी जुटाएं, अपनी योजनाएं स्पष्ट रखें और हर स्थिति का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाएं। श्रोताओं, यह समझना बहुत आवश्यक है कि विदेशों में पढ़ाई एक अवसर है, लेकिन यह कोई अनिवार्य नहीं है कि पढ़ाई सिर्फ विदेशों में ही की जाए, क्योंकि हमारा देश भी ज्ञान, प्रतिभा और संभावनाओं से भरपूर है। यहाँ रहकर भी अनेक छात्र अपने परिश्रम और लगन से ऊंचाइयों को छू रहे हैं। वहीं जो छात्र विदेश जाते हैं, वे वहाँ से ज्ञान और अनुभव को लेकर लौटते हैं और अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान देते हैं। वह अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है उन्हें सही दिशा देना। विदेश में पढ़ाई एक ऐसा मार्ग है जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही निर्णय, सही तैयारी और मजबूत इरादों की अति आवश्यकता होती है। उम्मीद है आज की यह बातचीत आपको इस विषय को लेकर बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी और आपके भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में भी सहायक सिद्ध होगी। इसी सकारात्मक विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वार्ता से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है दिमाग का असली गेम, जहां आपका सही जवाब दिलाएगा आपको खास पहचान और नाम।
2: बिल्कुल, और ये कोई साधारण सवाल नहीं है, ये है आपका पसंदीदा क्वेश्चन ऑफ द डे।
1: बिल्कुल, लेकिन आज के सवाल पर आने से पहले जरा जोरदार तालियां भी बजा लीजिए उन शानदार साथियों के लिए जिन्होंने कल अपने बेहतरीन जवाब से सबको पीछे छोड़ दिया।
2: जी
1: जी हाँ,
2: हाँ, क्योंकि अब वक्त है हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे विनर्स को बताने का। तो दोस्तों, कल का सवाल था आपसे कि आकाशवाणी को उसका नाम किस वर्ष में मिला, जिसका सही जवाब है 1956 में।
1: जी हाँ दोस्तों, और सही जवाब देने वाले हमारे साथी हैं चंदा चंदौली से। चंदा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, हमारे जिन साथियों के जवाब गलत हो गए या ससमय उत्तर नहीं दे पाए, वो घबराए नहीं, आप आज बाजी मार सकते हैं।
2: तो अब दोस्तों, वक्त आ गया है आज के नए सवाल का। तो ध्यान से सुनिए, आज का प्रश्न है, 3 अक्टूबर 1957 को स्थापित आकाशवाणी के विविध भारती चैनल के उद्घाटन दिवस पर प्रसारित होने वाला पहला गीत कौन सा था?
1: दोस्तों, सवाल एक बार फिर से। 3 अक्टूबर 1957 को स्थापित आकाशवाणी के विविध भारती चैनल के उद्घाटन दिवस पर प्रसारित होने वाला पहला गीत कौन सा था? तो दोस्तों, जवाब आपको कहाँ भेजना है ये तो आपको पता ही है। जी हाँ, आप अपना जवाब हमें हमारे इंस्टाग्राम यूथ AIR वाराणसी या फिर

0: हमारे ईमेल youthairvns@gmail.com पर भेज सकते हैं।
1: तो देर किस बात की है, जल्दी कीजिए, जवाब भेजिए और बन जाइए हमारे अगले क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर्स। दोस्तों, कहते हैं ना कि जीत सिर्फ नाम की नहीं होती, मेहनत की पहचान भी होती है। और आज के हमारे विजेताओं के इसी जज्बे को सलाम करते हुए पेश है ये खास गीत उनके नाम।

0: चलिए दोस्तों, इसी सीखने सिखाने के सिलसिले के साथ बढ़ते हैं हम अपने यू डायरी की ओर और जानते हैं कि आज हमारे शब्दों के पिटारे में कौन से नए और खास शब्द शामिल हैं।
1: जी हाँ दोस्तों।

0: दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का शब्द है अभिकल्पना। अभिकल्पना एक सुंदर और अर्थपूर्ण हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी योजना, विचार, रचना या डिजाइन की कल्पना करना अथवा उसकी रूपरेखा तैयार करना। सरल शब्दों में कहें तो किसी नए कार्य को शुरू करने से पहले उसकी सोच, योजना और संरचना बनाना ही अभिकल्पना कहलाता है। यह शब्द वास्तुकला, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग इस तरह कर सकते हैं, नए भवन की अभिकल्पना आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखकर की गई। किसी भी सफल परियोजना की शुरुआत अच्छी अभिकल्पना से होती है।
1: और अब बढ़ते हैं हमारे आज के अंग्रेजी शब्द की ओर। टुडेज इंग्लिश वर्ड इज कूडोस। कूडोस का अर्थ होता है प्रशंसा, सराहना या बधाई। इन इंग्लिश इट मीन्स प्रेज एंड एडमिरेशन फॉर एन अचीवमेंट और सक्सेस। जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है या बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो उसकी तारीफ करने के लिए कूडोस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एंड द सेंटेंस फॉर्मेशन वुड बी एज कूडोस टू द स्टूडेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल इवेंट। एंड सेकेंड, शी रिसीव्ड कूडोस फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिशन।
0: दोस्तों, हम युवाओं के लिए रोजगार सूचना सिर्फ एक विज्ञापन नहीं होती, वो उनके वर्षों की मेहनत, सपनों और भविष्य की दस्तक भी होती है। किसी के संघर्ष को दिशा देती है तो किसी के आत्मविश्वास को नया आसमान, क्योंकि सही समय पर मिली एक सूचना जिंदगी बदल देने की ताकत रखती है। तो चलिए जानते हैं हम आज के आपके लिए क्या रोजगार सूचना लाए हैं।
1: दोस्तों, रेलवे ने RRB असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती 11,127 पदों के लिए है। इसके आवेदन पत्र 15 मई से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों का 10वीं पास होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इतिहास की ओर और जानते हैं कि आज के दिन उन बातों को जो आज हमारे लिए इतिहास बन चुके हैं और उनकी जानकारी रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है।
1: 1784, अंग्रेजी और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच संधि हुई। 1924, जर्मन कार निर्माता कंपनियों मर्सिडीज और बेंस का विलय होकर मर्सिडीज बेंस बनी।
0: जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन सन 1940 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी कि BBC ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की थी। सन 1998 में भारत ने पोखरण में अपनी शक्ति वन परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: और दोस्तों, 2000 में भारत की एक अरबी बच्ची आस्था का जन्म हुआ जो भारत की 1 अरब जनसंख्या का प्रतीक बनी। और 1950 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का जन्म हुआ। 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो की प्रमुख वैज्ञानिक ऋतु करधिल का जन्म, जिन्हें रॉकेट वुमेन के रूप में जाना जाता है।
0: तो दोस्तों, बातों हो यादों की, मुस्कुराहटों की या फिर दिल के एहसासों की, हर रंग को और खूबसूरत बना देता है। एक प्यारा सा गीत इसी सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं आज का ये शानदार नगमा।

दोस्तों, वो दौर याद है जब घर में एक रेडियो होना किसी खजाने से कम नहीं होता था। सुबह की शुरुआत भक्ति संगीत से, दोपहर में समाचार, शाम को हवा महल और रात में छाया गीत। पूरा परिवार रेडियो के इर्द गिर्द बैठ जाता था। किसी को गीत सुनना होता तो किसी को क्रिकेट कमेंट्री का इंतजार होता। आइए अब एक झलक आकाशवाणी के गरिमामयी सफर की। दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के नाम से हुई। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी कि IBC ने बम्बई और कलकत्ता से नियमित प्रसारण शुरू किया। 1930 में, आपको बता दें कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण 1930 में IBC बंद हो गई, जिसके बाद भारत सरकार ने प्रसारण सेवा अपने हाथ में ले ली। 1930 में इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रखा गया। आकाशवाणी शब्द का श्रेय प्रख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। माना जाता है कि उन्होंने 1930

0: के दशक में इस शब्द का प्रयोग किया था। आकाशवाणी का अर्थ होता है आकाश से आने वाली वाणी या फिर दिव्य आवाज। स्वतंत्रता की आधी रात 14-15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आकाशवाणी से ही प्रसारित हुआ था। आज़ादी के समय भारत के AIR के केवल 6 स्टेशन थे। आज यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क में गिना जाता है। आकाशवाणी का समाचार प्रभाग देश की सबसे पुरानी और विश्वसनीय समाचार सेवाओं में से माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि विविध भारती सेवा की शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 को हुई थी ताकि रेडियो सीलोन की लोकप्रियता का मुकाबला किया जा सके। विविध भारती पर प्रसारित होने वाला हवा महल और जयमाला जैसे कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय हुए। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें नहीं दी, इसने संस्कृति को संजोया, लोकगीत को पहचान दी, नए कलाकारों को मंच दिया और भाषा की मिठास को घर घर तक पहुंचाया। कितने ही महान स्वर पहली बार इसी मंच से गूंजे। दोस्तों, 90 साल का ये सफर तकनीक के बदलते दौर का गवाह भी रहा है। रेडियो सेट से लेकर डिजिटल स्ट्रीमिंग तक माध्यम बदले, समय बदला, लेकिन आवाज़ का अपनापन नहीं बदला। आज भी जब सुनाई देता है तो मन अपने आप बीते दिनों की गलतियों में लौट तो मन बीते दिनों की गलियों में लौट जाता है। तो आइए इस खास अवसर पर सलाम करें उन सभी आवाज़ों को जो कभी हमारे सुबह की शुरुआत बनी तो कभी रातों की तन्हाई का साथी, उन उद्घोषकों को, उन तकनीशियनों को, उन कलाकारों को जिन्होंने आकाशवाणी को सिर्फ संस्था नहीं एक भावना बनाया। 90 वर्षों की यह गौरव गाथा को हमारा नमन, हमारा प्रणाम। आकाशवाणी आवाज़ जो पीढ़ियों से दिलों में बसती आई है। दोस्तों, इतिहास और साहित्य ये दो ऐसे अध्याय हैं जो हमें सिर्फ अतीत नहीं बताते बल्कि वर्तमान को समझाने की दृष्टि भी देते हैं।
1: बिल्कुल सौरभ, पहले बात करते हैं आसफ अली की। उनका जन्म 11 मई 1888 को हुआ था। वे पेशे से एक वकील थे लेकिन दिल से एक सच्चे देशभक्त।
0: और उनकी जिंदगी का एक बहुत प्रेरक पहलू ये है कि उन्होंने सिर्फ आज़ादी की बात नहीं की बल्कि उसे जिया। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया तब आसफ अली ने उनके पक्ष में अदालत में मजबूती से पैरवी की।
1: और एक दिलचस्प बात उनकी पत्नी थी अरुणा आसफ अली, जिन्हें भारत छोड़ आंदोलन की नायिका कहा जाता है। यानी यह जोड़ी सिर्फ जीवन की नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई की भी साथी थी।
0: और दोस्तों, अब बात मंटो की। तो मंटो एक मशहूर कथन के लिए जाने जाते हैं कि अगर आपको मेरी कहानियां बर्दाश्त नहीं होती तो इसका मतलब है कि ये ज़माना ही नामुनासिब है।
1: वाह, एक तरफ आसफ अली जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और दूसरी तरफ मंटो जिन्होंने समाज के सच के लिए कलम उठाई।
0: जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि शहादत हसन मंटो का जन्म 11 मई 1912 को पंजाब के समराला में हुआ था। दोस्तों, इतिहास और साहित्य के ये दो सितारे हमें यही सिखाते हैं, सच बोलने और सही के लिए खड़े होने का साहस कभी पुराना नहीं होता।
1: तो दोस्तों, अब इजाज़त लेने का वक्त आ पहुंचा है, मगर यकीन मानिए ये आवाज़ें, ये बातें और आपका अपनापन दिल में यूं ही मुस्कुराता रहेगा। तो कार्यक्रम में आज हम आपके साथ थे।
0: मैं था सौरभ
1: और मैं निहल।
0: दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

0: युवा साथी भी सुन रहे थे अपना प्रोग्राम युववाणी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे
1: गोरखपुर से भोजपुरी समाचार।

0: नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 बरिस पूरा भइले के उपलक्ष्य में 8 मई से आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मुख्य कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा कैन। वहां के सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक कैनी। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में शामिल भैनी। यह मौका पर मुख्य समारोह के संबोधित करत प्रधानमंत्री कहना कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता आ देश के शाश्वत आत्मा का प्रतीक हो।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: ओहर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौका पर आज वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव का आयोजन कैल गए। ए मौका पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमनाथ से आयल जल से काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक कैलें। एक बाद वहां के सोमनाथ मंदिर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौजूदगी वाले मुख्य कार्यक्रम को सजीव प्रसारण देखने। इस मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहने कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमने सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्पना के साकार होते देख रहे हैं। मुख्यमंत्री कहने कि भारत के सनातन संस्कृत पर आक्रमण तो हो सकेला, बाकी ओके हरावल नहीं जा सकेला।
2: जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांताओं का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत के स्वाभिमान की कथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कहले हैं कि सरकार विश्वविद्यालयन के तर्ज पर डिग्री कॉलेजनों के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रैंकिंग देवले की दिशा में काम करी। एक खातिर डिग्री कॉलेजन के प्राचार्यन का कार्यशाला आयोजित कर जा रहा हो। विधानसभा परिसर में आज पत्रकार लोगों से बतियावत उच्च शिक्षा मंत्री बतौने कि कॉलेजन में छात्र संख्या बढ़ावे, नया शिक्षा नीति के तरियन पाठ्यक्रम विकसित कैले आ रोजगार परक शिक्षा के बढ़ावा दिहले पर सरकार को खास जोर बा। केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार आ आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन बदे अधिसूचना जारी कर दिहले हो। ये अधिनियम ए बरिस 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाई। एगो रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल के बचत से जुड़ल अपील पर लोगों से ध्यान देवे के कहले हैं। पश्चिम एशिया संकट के देखत नई दिल्ली से वहां के ईंधन बचत के जरिए देश के आर्थिक बोझ के कम कैले पर खास जोर देनी।
4: मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर हम अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने के लिए हर संभव

0: प्रयत्न करें ताकि देश पर पड़ रहे आर्थिक भार को कम किया जा सके।
1: मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी जिलन में बिहने या 13 मई के कहीं कहीं बरखा गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में धान के खेत की तैयारी विषय पर सुनिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वार्ता, साथ ही सुनिएगा बाबूलाल यादव और साथियों का गाया लोकगीत। 8:00 सुगम संगीत कार्यक्रम की कलाकार होंगी मिताली सिंह। रात 10:00 आकाशवाणी के 90 वर्ष इससे संबंधित कवि गोष्ठी का प्रसारण होगा। प्रतिभागी होंगे अशोक कुमार सिंह, अत्रि भारद्वाज, राम नरेश और सविता सौरव। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं पंडित किशन महाराज का एकल तबला वादन। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर। शाम 7:00 7:31 पर रसरंग और रात 8:15 पर रस माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें कल यानी 12 मई सन 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल रात 10:00 खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में मिट्टी की जांच का महत्व विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में गर्मी के मौसम में होने वाले रोग और होम्योपैथिक उपचार, इस विषय पर लीजिएगा जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ आप सुनते हैं प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर और दिन में 12:45 पर सुनेगा रवि कुमार प्रजापति का बांसुरी वादन। रात 10:30 पर विदुषी किशोरी अमोनकर के गायन का प्रसारण होगा। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12:00। दिन में 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह और रोजगार के अवसर विषय पर प्रिया सिंह की बातचीत के अलावा सुनेगा गीत संगीत। युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि विषय पर डॉक्टर योगेश कुमार यादव की बातचीत के अलावा सुनेगा राजकुमार तिवारी का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाय लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। रात 8:00 सुगम संगीत के कलाकार होंगे मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शीर्ष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें

0: 054-222-7658।
1: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं शान और कैलाश खेर की आवाज में फिल्म फना का गीत। गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: निधि ही झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् सोमनाथ अमृत पर्व न केवलं भूतकालस्य उत्सवः अस्ति अपितु आगामि सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्रोतो भविष्यति। मन्दिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। केन्द्र प्रशासनेन 25-2000 वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। सहैव अनुमीयते यत् आगामि वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु इण्डियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सोमनाथ मन्दिरे सोमनाथ अमृत पर्व महोत्सवावसरे विशेष पूजाम् अकरोत्। मन्दिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। महापूजायाः अनन्तरं कुम्भाभिषेकः ध्वजारोहण समारोहश्चापि सम्पन्नः। अवसरेऽस्मिन् भाषमाणः प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् सोमनाथ मन्दिरं देशस्य शाश्वत आत्मनः दिव्यतायाः सहैव अगाध श्रद्धायाः प्रतीकं वर्तते। तेन प्रोदीरितं यत् सोमनाथ अमृत पर्व केवलं भूतकालस्य उत्सवः नास्ति अपितु आगामि सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्रोतः भविष्यति।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राष्ट्रिय प्रौद्योगिक दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् अद्यतन दिवसे एवं भारतस्य देशस्य आद्यत्वेन परमाणुत्रयाणां परीक्षणं जातम्। अनेन अस्माकं वैज्ञानिकाः विश्वस्य पुरतः भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितवन्तः।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: पूर्वाहणे प्रधानमंत्री प्रभास पाटनम संप्राप्य हमीरजी गोहिल क्षेत्रम यावत 1 किलोमीटर दीर्घम पथ प्रदर्शनम अकरोत्। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां पुष्पार्पणं विधाय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। नूतन प्रशासनस्य निर्माणानन्तरं प्रथमायां मंत्रिमंडल गोष्ठ्यां एते निर्णयाः स्वीकृताः। मुख्यमंत्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामि 45 दिनेषु सीमा प्राचीर रचनार्थं भूम्यधिकारः सीमा सुरक्षा बलाय प्रदास्यते।

0: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: मुख्यमंत्रिणा श्री अधिकारी इत्यमुना राज्य केन्द्र सर्वकारस्य महती आयुष्मान भारतम स्वास्थ्य योजना अन्याः च राष्ट्रिय योजनाः प्रवर्तयितुं घोषणा कृता। अनेन सहैव मन्त्रिमण्डलेन विद्यालय शिक्षक पदानां आवेदकानां कृते आयुः सीमायां 5 वर्षाणां वृद्धिः अपि स्वीकृता, येन युवभिः अधिकारावसराः प्राप्स्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिम एशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। तेलंगाना राज्यस्य राजधान्यां हैदराबाद नगरे एकां जनसभां संबोधयन् श्रीमोदी नागरिकेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत् आगामी एक वर्षं यावत् तैलंधनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेश यात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्ण क्रयणे नियन्त्रणं तथा च स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः विहितः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्।
2: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: केन्द्र प्रशासनेन 25-उत्तर-2000तम वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। अधिनियमोऽयम् अस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथमदिनांकात् कृत्स्नेहि देशे प्रवर्तयिष्यते। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। अद्य प्रकाशितेन SBI शोध इत्यस्य प्रतिवेदनेन अनुमीयते यत् आगामी वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। प्रतिवेदने इदमपि प्रोक्तं यत् GDP वृद्धिः प्रायः 7.2% भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता दलं विरुध्य संयुक्त विपक्षी मोर्चा इति निर्मातुं ममता बैनर्जी महोदयायाः प्रस्तावः कांग्रेस वामपंथी दलैः निराकृतः। तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बैनर्जी कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलं समेत्य सर्वेषां विपक्षी दलानां भाजपा विरुद्धं एकत्रीकरणाय आह्वानं कृतवती। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन बृहस्पतिवासरं यावत् देशस्य उत्तर पश्चिम भागस्य केषुचित् स्थानेषु मेघगर्जनस्य, विद्युत्पातस्य, प्रचण्ड वायुनां च पूर्वानुमानं ख्यापितम्। अद्य श्वः च जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः केषुचित् स्थानेषु उपलवर्षा अपि सम्भाव्यते। ऋतु विभागेन उक्तं यत् हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्ड राज्ये च श्वः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। अत्रावधेयं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन चारधाम यात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रतिकूल स्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। IPL क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम।
1: बिरजू भैया।
0: हाँ सत्तू भैया।
1: अरे कहा हो, अब तो जायद को मार देखते हैं कि सब्जी और यही तरबूज या नाशपाती काकर पूरा खात हुआ, कुछ लेके यू जाए देखा नहीं है कि दोपहरियों में लंच बॉक्स में रख के जो अंग्रेजी में कुल छुटकन बचवन के ना घरवा में दिया ला
0: हाँ
1: ओमे
0: भैया,
1: काट काट लेके आवा तड़ा तो कैसन कुल फसल भइल ल तोहार।
0: ये भैया देखा, कहल जाला ना कि गर्मी में ठिलिया के पनिया जितना ठंडा लगाला ना हो, उतना फ्रिज के पानी ना बढ़िया, सेहत बदे खराब है रहला। ऐसे हम तो कह भैया लोग कि मटका रख लें, माटी के बर्तन, में पानी रखें, आप बढ़िया से के पिए, आप बाल बच्चन के भी पुए। खास करके देखा भैया, अपने घरे द्वारा जो बुजुर्ग आदमी है उन्हों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
1: बिल्कुल भाई, उनके भी ध्यान देवे के है, अपनी खेती बाड़ी के भी ध्यान देवे के है। हर खेती के बाद देखा दूसरी खेती का हमनी का अपन खेती किसानी में तैयारी करी नहीं जाए तो भाई, अब जैसे जैसे जायद का फसल अपनी अंतिम पड़ाव पर चलत है ना, वैसे हमनी का अब खरीफ की तैयारी की तरफ चलत हैं जाए। आ बिरजू भैया ये जान ल ना कि अपन खेती किसानी ऐसा कहल जाओगे काम है ना कि ओ में हरदम कोनो ना कोनो काम लगल रहेला और हरदम नया नया तकनीक आवत रहेले,
0: भैया
1: और वो तकनीक के हमारे वैज्ञानिक भैया लोग कहल जाला कि आविष्कार करना और कुछ ना कुछ माध्यम से हमनी के ओकर सीख देना या सीख मिलेला। वो चाहे कहल जाओ कि अपन रेडियो के माध्यम होखो, टीवी के माध्यम होखो, अखबार के माध्यम होखो, या हमनी के किसान भैया लोग जाके वैज्ञानिक भैया लोग से सीधा जुड़ के बातचीत करके ओके सीखेला लोग, तो अपनी खेती में ओकर बहुत बड़ा योगदान हो वैज्ञानिक प्रविधि का।
0: देखा भैया, कहा जाला कि तकनीक जब अपनैबा ना तो बढ़िया ढंग से खेती बाड़ी हुई, आ पैदावार भी बढ़ी, आ ऐसे किसान भाई लोग का जीवन भी खुशहाल रही।
1: बिल्कुल, और इतने नहीं बिरजू भैया, ये जान लो कि अपनी खेती की संगे संगे ना हमनी का सरकार अपने कहल जाओ कि देश की नागरिकन बदे,
0: युवा लोग के खास करके।
1: हाँ युवा लोग के कहल जाओ कि जे तनी उमरगर हो उन्हों बदे हो, सबकी बदे, मतलब कि भाई कहल जाओ कि कोनो सीखे का कोनो करे का कोनो उम्र तो होले नहीं।
0: देखा कहल गल कि जैसे मान ला पढ़ाई लिखाई कैला, कोनो कारण बस नौकरी चाकरी ना मिलल, तो भैया कौन कौन हुनर अगर सीख ले बा तो अपन रोजी रोटी बदे दिक्कत ना होई।
1: बिल्कुल, और यही बदे सरकार न कौशल विकास योजना के तहत जे भी युवा वर्ग है या जे भी कहल जाओ कि थोड़ा ज्यादा उम्र में भी, मैंने कौनो उम्र में
0: हाँ
1: वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो
0: सब
1: केहू
0: करे
1: हो,
0: बदे।
1: चाहे अपने यहाँ कहल जाओ कि जवन रिटायर माने के सेवानिवृत्त लोग हों, उन लोगन के भी देखा सरकार न अपने यहाँ कहल जाओ कि दाखिला ले के या ओमे तनी सा फीस की माध्यम से शुल्क लेके और उन लोगों के ना विकास कौशल विकास योजना के तहत शिक्षित प्रशिक्षित दे करत बा।
0: हाँ, जैसे भैया बाय आपका फीटर ITI सेंटर कुल खुलल बा स्कूल, उसे अपन शिक्षा लेके मोबाइल रिपेयरिंग काम जितना भी बाय कुल आदमी सीख ले ही, तो रोजी रोटी कहीं न कहीं अपना खोल के बैठ के आ दो पैसा कमा के अपन जीवन यापन कर सकत
1: बिल्कुल
0: है।
1: हो बिरजू भैया, ये जान ल कि मोबाइल का हुनर देखा सीख लेला ना तो अपन कहीं अपने नज़दीकी बाजार में एगो दुकान डाल दिया, हाँ अपन बैठल बैठल हो जी कैसे 2 पैसा पा भी जाता रहा, अपन घरे दुआरे का काम भी देख लेते हो, हाँ महिला लोग है सिलाई कढ़ाई का या कंप्यूटर कहल जाओ कि सीख लेते हैं तो भाई कोनो ऑफिस में या कहल जाओ कि कहीं अपन 2 पैसा का आमदनी उसे कर लेते हैं, भाई कहल जाओ कि घर ही में लोग कपड़ा सिल के, हाँ
0: आ देखा भैया, महिला लोग खास करके खाद्य प्रसंस्करण पर बड़ा जोर सरकार दिले, जिसे माला मुरब्बा जिसे मना बना के बाजार में बेचल जा सकाला, आ एक बाद अचार कभी बना के आराम से महिला लोग बेच सकेली। आ हमारे जो भाई लोग बाँ उन्होंने बदे अवसर बा समझ लें कि आप इलेक्ट्रिशियन के कोर्स कर लें, आ तमाम

0: तरह का और बात कह के आदमी अपन जीविका चला सकला।
1: बिल्कुल। और जो इलेक्ट्रिशियन का जो कोर्स कहत रहा है ना कि भाई देखो उकर अगर पढ़ाई पढ़ लेला तो भाई तमाम गांव घर में देखत हो ना कुल अंदरे अंदर देवलिया फाड़ के ओ में कुल बिजली के तार दौड़त हो पाइप लगा लगा के।
0: अब देखा भाई ये चीज कला तमरे याद अलग एक पलम्बर का भी हुनर बहुत अच्छा है,
1: हाँ
0: बहुत युवा जोरों से सीखत हुए गरीब।
1: बिल्कुल। तो ई जानल कि वो बिजलिया का अगर तोहके ज्ञान हो जाता ना तो देखो केहू के घर में अपन बिजली खराब हो जाता तो भाई ज्ञानी रहब तो जाके उनकर देखभाल देख के बना सकेल ओहू से 2 पैसा
0: खूब
1: पा
0: खूब
1: सकेल।
0: खूब
1: तो ई
0: आराम से।
1: जानल कि कोनो काम देख सीखले से होई बिरजू भैया। और जितने ओके टलब या सोचब कि नहीं हम ई काम ना सीखब तो देखो उससे तोहार आर्थिक नुकसान भी है तोहार समझ के भी नुकसान है और कहल जाओ कि 2 पैसा जौन चीज से आमदनी होत है वो तोहार ना होई भाई। अब कोई ना कोई देखो सीखते है।
0: कहा जाला भैया ना कि हाथ में अगर हुनर है तो खैले बिना आदमी उपवास ना करे।
1: और ये जानल ना कि अगर तू इमें सीखत हुआ ना तो मामूली सब्सिडी पर तोहके एकर पढ़ाई है तनी जोन फीस लगत है ओकर सब्सिडी के रूप में ओकर फीस वापस भी हो जाई। और सरकार का इमें इतना भूमिका है बिरजू भैया कि अगर तू कौशल विकास योजना के तहत कोनो हुनर सीख लेला तो जवन सरकारी काम हो या सरकार से जुड़ल एनजीओ है चाहे कोनो कह लो कि कंपनी है तो ऊ भी वैसन लोगन के समय समय पर रोजगार बदे अपनी यहाँ कह लो कि इंटरव्यू के माध्यम से या ऐसे बुला के ऊ लोग उन्होंने के हुनर के देखे ला लोग जांचे ला लोग परखे ला लोग और अपने यहाँ काम दे ला लोग।
0: देखा खास करके गरीब भाई लोग बदे तो बहुत जरूरी है भैया कि जिसे पैसा के अभाव में पढ़ाई लिखाई ना कर पावत हुआ तो ये हुनर अपना सीख ली है तो अपन जीवन यापन आराम से कर सकत हुआ।
1: तो देखो ये कुल काम ना ऐसा है कि एके सीखे के चाहिए ऐसे 2 पैसा का अपने समाज में या कहल जाओ कि अपने घरे द्वारे अपने माता पिता का तू सहायता कर
0: सेवा
1: सकेला
0: कह के भी 2 पैसा कमा
1: कमा
0: सकत हुआ गांव
1: सकेला।
0: में घरे रह के भैया।
1: तो भैया और भी आगे बात बत कही कल जी लेकिन एगो ऐसा से उस सुन लिया जाए फिर बत कही हो।
0: ठीक भैया सुन रहा।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से। वाह
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: सत्तू भैया
1: भैया देखा सनेस तो हो गई और जैसा हम कहते रहे ना कि भाई पूरा तरबूज नाशपाती या कुल ककड़ी तू खात हो और अगला खेत का अब तो तैयारी का समय आ गई है।
0: देखा भैया वहीं के याद दल देखा अब रोहिणी नक्षत्र भी नियर आ गए सतीश भैया। तो देखा धान उनका अगेती नर्सरी अब रोहिणी है कि नक्षत्र में आदमी किसान भैया लोग सचेत होके डालन आ कहल जाला भैया कि आगे के खेती आगे आगे पीछे के खेती भागे जोगे।
1: तो भाई जब आगे का तू खेती के बात कैला है ना तो आज धान के खेत का कैसे तैयारी करे के है ये विषय पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का वार्ता है आव हमनों को सुनल जा और भैया लोग के भी सुनवा जाए।
0: सुनवा दे भैया।
5: किसान भाइयों आज हम बात करेंगे धान के खेत की तैयारी के बारे में। धान हमारे देश के खरीफ मौसम की महत्वपूर्ण खाद्यान्न की फसल है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर किसान भाई करते हैं। धान की खेती की अच्छी पैदावार केवल उन्नत बीज खाद पर निर्भर नहीं करती बल्कि खेत की सही तैयारी भी उतना महत्वपूर्ण रखती है। यदि खेत की तैयारी वैज्ञानिक तौर तरीके से की जाए तो पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं खेत में खरपतवार कम होते हैं पानी का सही प्रबंधन होता है और उत्पादन में अच्छी वृद्धि होती है। इसलिए धान की खेती करने से पहले खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। आज की इस वार्ता में इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धान की खेती शुरू करने से पहले खेत से पिछले फसल के अवशेष खरपतवार और कंकड़ पत्थर को हटाकर खेत को साफ कर लें इससे खेत की जुताई करना आसान हो जाता है। यदि खेत में पुराने खरपतवार कीटों के अंडे मौजूद हों तो वे नई फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए खेत की प्रारंभिक सफाई धान उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी कदम माना जाता है। धान की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है लेकिन दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है

जिससे धान के पौधों को पर्याप्त नमी मिलती रहती है। धान के खेत का समतल होना भी उतना ही जरूरी होता है ताकि सिंचाई का पानी पूरे खेत में समान रूप से फैल सके। धान के खेत की पहली जुताई गर्मी के मौसम में मिट्टी पलटने वाले हल या रोटावेटर से करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से मिट्टी में हवा का संचार बढ़ता है और सूर्य की तेज गर्मी से कई प्रकार के हानिकारक कीट, फफूंद, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया से मिट्टी भुरभुरी बनकर पौधों की जड़ों के विकास में मदद पहुंचाती है। यदि खेत में कठोर परत बन गई हो तो किसान भाइयों, गहरी जुताई करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। इससे वर्षा का पानी मिट्टी में अच्छी तरह समाहित होता है और खेत की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है। पहली जुताई करने के बाद खेत में हल्की सिंचाई यानी पलेवा करें। जब मिट्टी में उचित नमी आ जाए तब दूसरी जुताई का काम करना चाहिए। इससे मिट्टी नरम हो जाती है और बड़े ढेले टूट जाते हैं। दूसरी जुताई करते समय किसान भाइयों, खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट मिलाना बहुत लाभकारी होता है। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए प्रति हेक्टेयर 80 से 100 कुंटल अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद खेत में मिलाने का काम करें। इससे मिट्टी की जैविक गुणवत्ता बढ़ती है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व लंबे समय तक धीरे धीरे मिलते रहते हैं। धान की खेती में खेत का समतल होना बहुत आवश्यक होता है। समतल न होने से खेतों में कहीं पर पानी अधिक भर जाता है तो कहीं पर कम रहता है, जिससे पौधों की वृद्धि समान रूप से नहीं हो पाती। आधुनिक तरीके से लेजर लैंड लेवलर या फिर पारंपरिक रूप से पाटा लगाकर खेत को समतल बना लेना चाहिए। धान के खेत को समतल बना लेने से पानी की बचत होती है, पौधों की समान वृद्धि होती है, उर्वरकों का सही उपयोग होता है और खरपतवारों के नियंत्रण में भी किसान भाइयों काफ़ी मदद मिलती है। धान की खेती में पानी को रोककर रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए खेत के चारों ओर मजबूत मेड़ बनाने का काम करना भी बहुत अनिवार्य होता है। मेड़ बंदी से बारिश या सिंचाई का पानी खेत से बाहर नहीं निकल पाता, साथ ही पोषक तत्वों और उर्वरकों का बहाव भी रुक जाता है। यदि खेत को मेड़ मजबूत होती है तो किसान कम पानी में भी धान की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कई किसान मेड़ों पर घास या दलहनी फसलें लगाकर अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। यदि रोपाई विधि से धान की खेती करना है तो पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। नर्सरी की मिट्टी उपजाऊ और भुरभुरी होनी चाहिए। नर्सरी वाले खेत में गोबर की खाद मिलाकर अच्छी तरह जुताई करना चाहिए। बीज बुआई से पहले खेत को समतल कर हल्की नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। हमेशा धान के उन्नत और रोग मुक्त बीजों का चुनाव करना चाहिए, इससे बेहतर पौध तैयार होती है। बीज को उपचारित कर बुआई करने से फफूंद से लगने वाले रोगों की फसल में रोकथाम हो जाती है। धान की खेती में किसान भाइयों, पडलिम का बहुत महत्व होता है। इस काम को करने के लिए रोपाई से पहले खेत में अच्छी तरह पानी भरकर मिट्टी को कीचड़ जैसे बनाया जाता है, जिसे पडलिंग कहते हैं। यह धान की खेती के एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अच्छी तरह पडलिंग करने से खेत में खरपतवार कम उगते हैं। इससे मिट्टी में पानी लंबे समय तक ठहरता है। पौधों को समुचित विकास के लिए जड़ों को उचित वातावरण मिलता है। यही नहीं, खेत में धान की बेहन रोपाई भी आसानी से हो जाती है। पडलिंग के लिए खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरकर ट्रैक्टर, कल्टीवेटर या फिर पडलर चलाकर यह कार्य किया जाता है। इसके बाद खेत को समतल कर धान की रोपाई का काम किया जाता है। धान की रोपाई करने से पहले किसान भाइयों, मिट्टी की जांच कराना भी आवश्यक होता है। इससे खेत में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी मिल जाती है, जिससे किसान सही मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। इससे उर्वरकों की लागत में कमी आती है, पौधों को संतुलित पोषण मिलता है और मिट्टी की सेहत में भी सुधार होता है। किसान मृदा परीक्षण का काम अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र या फिर सरकारी मृदा प्रयोगशाला में खेत की मिट्टी के नमूने ले जाकर

0: मिट्टी की जांच करा सकते हैं। धान के खेत की तैयारी में हरी खाद का उपयोग मिट्टी के सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके लिए ढैंचा, सनई या मूंग जैसी फसलों को खेत में पलटकर हरी खाद बनाई जाती है। ढैंचे की फसल से मिट्टी की प्रति हेक्टेयर लगभग 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 से 20 किलोग्राम फास्फोरस और 10 से 12 किलोग्राम पोटास की प्राप्ति होती है। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा में काफी वृद्धि होती है। हरी खाद से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इससे किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ने से मिट्टी भुरभुरी बनती है। इसमें मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भी बढ़ती है। किसान भाइयों, धान की फसल में खरपतवारों का उगना एक बड़ी समस्या है। खेत की तैयारी के दौरान ही इनका नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। गहरी जुताई, पडलिंग और खेत की सफाई से खरपतवारों की काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाती है। कुछ किसान बुआई या रोपाई से पहले खेत में पानी भरकर खरपतवार को उगने देते हैं और फिर बाद में जुताई करके उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। धान अधिक पानी चाहने वाली फसल है, इसलिए खेत में उचित सिंचाई प्रबंध करना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए खेत में पानी आने और निकलने के लिए नालियां बनाना भी जरूरी होता है। जहां वर्षा कम होती है वहां सिंचाई स्रोत की पहले से ही व्यवस्था करना जरूरी होता है। कभी कभी अधिक जलभराव वाली फसल के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखना भी आवश्यक होता है। आजकल किसान भाइयों, आधुनिक मशीनों और तकनीकों का उपयोग करके खेत की तैयारी को आसान और कम खर्चीला बना सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से रोटावेटर, पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, पडलर मशीन और जीरो टिलेज जैसी तकनीकों का बाखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तकनीकों के प्रयोग से मजदूरी, समय और सिंचाई जल की भी काफ़ी बचत होती है। कुछ किसान अब धान की सीधी बुआई भी करते हैं। इसमें खेत को अच्छी तरह समतल और खरपतवार मुक्त रखना बेहद जरूरी होता है। धान की बुआई की इस विधि को DSR तकनीक कहते हैं। इस विधि से खेत में अधिक पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे पानी की बचत होती है। इस विधि में खेत की तैयारी के दौरान नमी प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। धान की खेती में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत की तैयारी के समय जल संरक्षण के कुछ उपाय भी करना जरूरी होता है। इसके लिए खेत का समतलीकरण, मेड़बंदी और हरी खाद जैसी जैविक खादों का उपयोग पानी बचाने में मददगार साबित होती है। अंत में किसान भाइयों, धान के खेत की तैयारी के लिए सही समय पर जुताई, समतलीकरण, पडलिंग, जैविक खाद का उपयोग और जल प्रबंधन जैसे उपाय अपनाना चाहिए। इस तरह से यदि किसान खेत की तैयारी पर पर्याप्त ध्यान दें तो कम लागत में गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आशा है किसान भाइयों, बताई गई धान की खेत की तैयारी की इन बातों को ध्यान में रखकर धान की खेती करेंगे तो अच्छे उत्पादन के साथ बेहतर मुनाफा जरूर प्राप्त करेंगे।
1: भैया देखा कितना नीक और नगद का जानकारी देना है कि धान की खेती का पहले तैयारी कैसे करे के है।
2: बहुत फरियाद बताऊं
1: डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और एक बात सुन ला है उनका कि जवन अपन खेती जवन खेत में धान बुआ था ना, ओकर भाई देखा पहले ही से तैयारी करे बदे ये जान ला कि अबे ओकर जो गर्मी में ना पलट मिट्टी पलटे वाला हल से ओकर जुताई कर देवे के है,
2: गर्मी के जुताई।
1: हाँ, और ओकर फायदा सुन ला है, कहत रहना है कि जितने गहरा ओकर जुताई भइल है ना उतने उमें कह जाओ कि उर्वरा शक्ति ओकर बनी,
2: खरपतवार के कम रही।
1: हाँ, और पूरा जितना मान पानी सोखे का क्षमता रही ना वो ओकर बढ़ जाये। और मेड़ बंदी बदे देखा कितना बढ़िया बात बताई ना कि मोटा से मोटा आपन मेड़ बंदी कर, और अगर ज्यादा मोटा हो भी जाता ना तो उसे ना घबरा, उपेन कोनो दलहनी
2: फसल अरहर भया

0: हाँ
1: चाहे कुछ भी दलहनी फसल बोए
0: हाँ
1: दा।
0: कौनो ना कौनो फसल अपन बो द, ताकि वो जमीन भी तोहरी उपयोग में आ जा। और ये सबसे बढ़िया बात सुन ला का कि हरी खाद जितना है, जैसे ढैचा भइल, सनई भइल, तो ये कुल के ना,
1: मूंग भयल।
0: हाँ ये कुल के बो द और ओके वही में जोतवा द, ऐसे जितना नमी अपनी खेत का बा ना वो बनल रही। और ये जान ला कि तोहके बहुत नाम मात्रा का खाद भी उसमें डाले के
1: ओमे
0: पड़ी।
1: भैया उर्वरा शक्ति बहुत मजबूत हो जाई ना।
0: और यो देखला हा बतेना कि जीवांश की मात्रा बढ़ावे बदे बढ़ावला से मिट्टी भुरभरी होले।
1: एकदम एकदम भुरभुरी।
0: और एक और ही बात जान ला कि जोन पट्टा का बात करत रहना है ना, कि अपनी खेत में पट्टा लगा के ओके बराबर करा दो कर दो, तो ये जान ला कि सबसे जरूरी है। काहे से कि धान का ऐसा फसल है ना कि

0: रही और ये जानला कि तोहके बहुत ना मात्रा का खाद भी उसमें डाले के
1: ओमे
0: पड़ी।
1: भैया उर्वरा शक्ति बहुत मजबूत हो जाई ना।
0: और यो देखला हा बतैना कि जीवांश की मात्रा बढ़ावे बदे बढ़ोला से मिट्टी भुरभरी होले।
1: एकदम एकदम भुरभुरी।
0: और एक और ही बात जानला कि जोन उ पट्टा का बात करत रहना है ना कि अपनी खेत में पट्टा लगा के ओके बराबर करा दो कर दो, तो ई जानला कि ई सबसे जरूरी है। काहे से कि धान का ऐसा फसल है ना कि एमे बराबर पानी का जरूरत रही, और पानी के संगे संगे ई नहीं कि कहीं खाल है कहीं ऊंच है।
1: देखा खाल ऊंच हो जी भैया तो फसल प्रभावित हो जी, जहाँ देखा पानी कम लगी वहाँ घास फूस जामे के ज्यादा चांस रहा।
0: बिल्कुल। और एक और बात जानला कि ओमे नुकसान भी होला, नुकसान अपनी श्रम बल का भी होला कि हमेशा पानी भरत रह, जिधर खलार है उधर से बह जात हो और ऊंचा से पानिए ना चढ़त हो, और चढ़तो हो तो कम हो, और खलार की जगह ज्यादा पानी लगल है तो अब ऊंचा वाला तो जल्दी जल्दी सूख जाए, तो भाई उसे
1: फसल प्रभावित न हो भैया।
0: एकदम एकदम तो उसे नुकसान भी हुई। और बिरजू भैया हम तो कहब कि तनिया मन मनसाइन भैया लोग करवा दिया जा
1: तो
0: हो।
1: देखा अभी अपने पंचायती में मरमनसाइन बदे बाबूलाल यादव और साथी हुआ आ इनकर गवनई पंच लोग सुने आ पीछे से मनो सुनल जाओ।
0: सुनल जाए।

0: सत्तू भैया बड़ा बढ़िया जमाला देशभक्ति बाबूलाल यादव और साथी के आवाज़ में पंच लोग सुन लें भैया।
1: और ये देखला है कि कितना बढ़िया अपने गीत के माध्यम से हमने के देश का जोन बेटी हैं
0: बहुत अच्छा संदेश देला
1: और
0: भैया।
1: सबके ओ में जोड़त हुए सबके कार्य का बखान करत, कितना बढ़िया उनकर गवनई रहला झांसी की रानी के बारे में देखा, कितना बखान और कितना उनकर गुणगान बतैना है अपने
0: अरे
1: गीत के माध्यम से अपने भैया उनके कल्पना चावला जोन की अंतरिक्ष में गई रहली।
0: तब
1: देखा उनकरी बारे में कितना निक बतैना अपने गीत के माध्यम से, सुनीता विलियम्स, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, देखा सबका कितना गुणगान और कितना उनकर कार्य का सराहना कल गई है। देखा कहल जाला ना कि अपनी देश में
0: भैया
1: ये जान ल कि हमने के संविधान से ही बराबर का हक मिलल है, वो चाहे बेटा होखो, बेटी होखो, पुरुष होखो, महिला होखो, सबके,
0: सही
1: और
0: बात।
1: सबके बराबर के हक के अनुसार न सबके हर काम में उतने आगे बढ़ के अपने देश का नाम करे के चाहिए
0: एकदम भैया लगन से।
1: कि जौना से हमने के देश का बखान पूरे विश्व में हो। तो अब भैया लगले
0: भैया
1: हाथे कल की कार्यक्रम के बारे में बता दिया जाए अपने भैया उनके।
0: हाँ भैया, तो देखें कल बिहाने 6:05 में खेती के बातें में विषय मिट्टी के जांच के महत्व ए पर जानकारी दिए दिनेश कुमार सिंह भैया।
1: और संझा के अपने यही कार्यक्रम कृषि जगत में ना जो उनकी 6:30 पर हुई, एमए मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक विधि का होले, एपन डॉक्टर योगेश कुमार यादव और सतीश कुमार यादव को बतकई हुई भैया लोग वो सुनिया। और ए भैया
0: हाँ भैया।
1: हम तो कहो कि देखा चलत चलत ना अपनी किसान भैया लोग से हम ये आग्रह करब कि देखा नौता हकारी का समय चलत है और समय से जाए के है, दो रोटी खावे के है और जगह मिले और समय रहे तो वहीं सो जा, और
0: भैया
1: नहीं तो सर से कराहे अपने घर की ओर लौट चले, कहें से कि रात बिरात देखा हर चीज का कहल जाओ कि सुविधा रहे के चाहिए और अपन जीव जहान के जोखिम में ना डाले, कहें से कि भाई रात है बिरात है और तमाम गाड़ी घोड़ा चलत हूँ, तो अगर तू रात बिरात
0: कहल
1: चल
0: भैया कि जहान है तो जहान है।
1: अगर रात बिरात कोनो मजबूरी बस चलत भी हो ना तो देखा अपनी गाड़ी घोड़ा का लाइट जो बत्ती होले
0: अब ब्रेक वगैरह भैया सही रखल
1: एकदम
0: करा।
1: एकदम सही रखल करो और चलावा बढ़िया से, और हमेशा जब मोटरसाइकिल से अगर जात हो तो दो आदमी बैठल है तो दोनों लोग हेलमेट लगावा। आ ओकरी
0: एकदम
1: बाद
0: भैया बहुत आराम से चला, समान गति में चला।
1: और अगर कार से जात हुआ तो कार में भी अपन सीट बेल्ट का प्रयोग करो, ज़्यादा मतलब जितनी ओकर सीट पर जगह बनल है बैठे खातिर उतने लोग के बैठा, ये नहीं कि अगर तू कार देख लेला तो मार में घर भर के ठूस ल, जगह नहीं हो तब बैठा ल, तो देखा ये
0: नहीं
1: भी ना
0: भैया
1: करे के है।
0: ये सत्तू भैया अब देखा हो बात बत कही करत। अब हमन का बेला भी हो गया, पंच लोग से आज्ञा लेवे के चाहत है।
1: बिल्कुल लिहल जा तो पंचो
0: तंचो राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत मीडियम वेव 241.5 चार मीटर पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं यशुदास की आवाज में फिल्म चित चोर का गीत। गीत और संगीत

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म पुलिस और मुजरिम से। आवाज़ मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की है। इस गीत को लिखा है दिलीप ताहिर ने और धुन तैयार की है बप्पी लहरी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मन्ना डे और साथियों की आवाज में फिल्म तीसरी कसम से। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार राम जतन प्रजापति निवासी मोहल्ला कादीपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी ये 17 जनवरी सन 2026 से लापता हैं। रामजतन प्रजापति के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 60 वर्ष, लंबाई लगभग 152 सेंटीमीटर, 11 बदन है, रंग गेहुआ है, चेहरा लंबा है, आंखें काली हैं। ये हिंदी और भोजपुरी भाषा अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। यदि आपको रामजतन प्रजापति के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने पर या फिर थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है। थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार जूली 29 दिसंबर सन 2025 से लापता हैं। ये बुलेटिन चौक वाराणसी की निवासी हैं। जूली के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 40 वर्ष, लंबाई 155 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ है, सामान्य शरीर है। ये हिंदी और भोजपुरी भाषा बोल लेती हैं। यदि आपको जूली के बारे में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना,
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
3: और ये
4: मेरी बुढ़िया की ना।
5: पर दादी, हाँ, आपके नाम?
6: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
6: आरबीआई कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थस्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026

0: में हुए शामिल। कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों के भी नैक रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं।
1: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है, और हम सब आभारी हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को प्राप्त हो रहा है, उसी का परिणाम है सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज सोमनाथ में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी आध्यात्मिक चेतना में निहित होती है, और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है।
2: यह पर्व हमें अपने गौरवशाली अतीत से ऊर्जा लेकर भविष्य के भारत के निर्माण का संकल्प देता है। ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, अपनी संस्कृति पर गर्व करता हो और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हो। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक समृद्धि, भौतिक संस्थान या तकनीकी प्रगति में नहीं होती, बल्कि उसकी सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और आत्मिक आधार में निहित होती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है, नीति निर्माण में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। आज उत्तर प्रदेश ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है।
3: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें, और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वह थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता

0: देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली के शुभारंभ के साथ भारत ने प्रौद्योगिकी आधारित राजमार्ग प्रबंधन के एक नए युग में प्रवेश किया है। नई दिल्ली में इस उन्नत टोल प्रणाली का उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पहल से टोल प्लाजा पर लगने वाला अधिक समय कम हो जाएगा और ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और यात्रा में होने वाली देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी और प्रतिवर्ष 81,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विश्वविद्यालयों के साथ ही प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को भी नैक और अन्य राष्ट्रीय रैंकिंग दिलाना है। इसके लिए कॉलेजों के प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें उन्हें बताया जा रहा है कि संस्थानों में गुणवत्ता, रिसर्च कल्चर, डिजिटल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाकर किस प्रकार रैंकिंग हासिल की जा सकती है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कॉलेजों में छात्र संख्या बढ़ाने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में दो दिवसीय श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष नीपेन्द्र मिश्र ने बताया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभा कार्य 30 मई तक पूरा कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा में निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर स्थित संग्रहालय दिसंबर के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। श्री मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर में विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
2: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने दो अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं, लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
1: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NVRI में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विन कशकर ने AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रिसीजन ब्रीडिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से जलवायु अनुकूल और उच्च उत्पादकता वाली फसल किस्मों के विकास पर प्रकाश डाला। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देशभर के तीर्थस्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना, मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों को भी रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए

0: संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बोल बोल के थक गए।
2: मीडियम वेव 241.5 4 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं राहत फतेह अली खां की आवाज में फिल्म कलयुग का गीत। गीतकार हैं सईद कादरी और संगीतकार अनु मलिक।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म गर्लफ्रेंड से। गीतकार हैं प्रवीण भारद्वाज और संगीतकार डब्बू मलिक।

कुमार सानू और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गर्लफ्रेंड का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं राहत फतेह अली खां की आवाज़ में फिल्म दबंग से। गीतकार हैं अनवर और संगीतकार हैं साजिद वाजिद।

0: कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म शीशा से। आवाज कुणाल गांजावाला की है, गीतकार हैं माया गोविंद और संगीत दिलीप सेन समीर सेन का।
1: There's something I want to tell you, girl. I don't know what it is. Just can't. I just can't.

रसरंग कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आइए सुनते हैं फिल्म गुनाह से। आवाज रूप कुमार राठौर और साबरी ब्रदर्स की है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार साजिद वाजिद।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं मिताली सिंह। आइए सुनते हैं

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं मिताली सिंह। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज में एक और गजल।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म राही बदल गए का गीत। गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीतकार आर डी बर्मन।

मिताली सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज़ किशोर कुमार की है, गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीतकार आर डी बर्मन।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म खामोशी से। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार जतिन ललित।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बंदिश का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में फिल्म धनवान से। इस गीत को लिखा है साहिर ने और संगीत से सजाया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।

0: विचारों की अभिव्यक्ति और अधिकार प्राप्ति का आधार सत्याग्रह।
1: आइए अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाएं।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग का अनुसरण करें।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में NDA का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से

0: एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी

0: ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की

0: वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत एक अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, turns West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक

0: 360 points to settle at 23,816. The India Meteorological Department, or IMD, has forecast heat wave conditions over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. Meanwhile, heavy rainfall is likely to prevail over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim during the next 2 days. In Delhi NCR, cloudy skies are expected over the national capital tomorrow. On to sports. In cricket, India continues to hold the number one position in the latest ICC men's ODI team rankings following the annual update released today. India's rating slipped by 1 point from 119 to 118. New Zealand is on the second position, gaining 2 points to move up to 113. Australia stayed at the third spot with an unchanged rating of 109. The biggest movement inside the top five came from South Africa, which climbed above Pakistan to move into the fourth place. And in IPL cricket, Punjab Kings were 180 for 2 in 11.3 overs against Delhi Capitals in Dharamsala when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Himanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and west Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाजे को इस दहाई के सबसे बड़े बहरान में से एक करार दिया। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन और LPG का 45 दिन के लिए जखीरा मौजूद है। मरकज ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी एक्ट पर अमल आवरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा सरमा कल आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। रियासत में एनडीए की लगातार ये तीसरी मुद्दत की हुक्मरानी होगी। महकमा मौसमियात ने कल गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश में गर्म लहर की पेशगोई की है। और क्रिकेट में भारत ने मर्दों की एक रोजा क्रिकेट की दर्जाबंदी में अपना अव्वल मकाम बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाजे को इस दहाई के सबसे बड़े बहरान में से एक करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के इफ्तिताह के बाद एक इज्तिमे से खिताब कर रहे थे।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस सूरत हाल का मुल्क के अवाम पर कम से कम असर पड़े। वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी एशिया के बहरान के असरात से निमटने के लिए अपनी 7 नुकाती अपील को एक बार फिर दोहराया। इसमें ईंधन की खपत में कमी, जहां तक मुमकिन हो घर से काम करने को तरजीह देना, 1 साल के लिए गैर मुल्की सफर से इज्तिनाब करना और स्वदेशी मसनूआत को इख्तियार करना शामिल है। उन्होंने शहरियों से जोर देकर यह भी कहा कि वो खाने के तेल की खपत में कमी करें, कुदरती काश्तकारी की जानिब पेशरफ्त करें और सोने की गैर जरूरी खरीद से गुरेज करें।

0: बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: सरदार धाम हॉस्टल में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सहूलत है, साथ ही मरकजी डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम जैसी सहूलियात भी शामिल हैं। जनाब मोदी ने सरदार धाम इमारत में मुख्तलिफ सहूलियात का दौरा भी किया, जिसमें रिसेप्शन का एरिया और डाइनिंग एरिया, नीज, ई लाइब्रेरी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर अव्वलियत का हामिल है और इसकी हैसियत अबदी है। ये मुल्क के तहजीबी हौसले और अटूट भक्ति का मुजाहरा करता है। जनाब मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मंदिर में महापूजा की और फिर कुंभ अभिषेक किया और परचम लहराया। ये तकरीबात भगवान शिव के लिए वक्फ इस बहाल किए गए मंदिर के इफ्तिताह के बाद 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद की गई। मंदिर के दौरे के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि नौ तामीर शुदा सोमनाथ मंदिर के दरवाजे 1951 में उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में खोले गए थे, जो दुनिया के लिए इस बात का वाज़ह ऐलान है कि हमला आवर तारीख की धूल में कहीं पीछे रह गए और भारत की रूह कायम और दायम रही। मंदिर में एक इज्तिमे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जानिब से मंदिर की तामीर नौ भारत की अपनी सकाफत को फख्र के साथ महफूज करने के अज़्म को जाहिर करती है।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: हुकूमत ने आज मुत्तला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है और भारत के पास 60 दिन का खाम तेल, 60 दिन की कुदरती गैस और 45 दिन के लिए एलपीजी का जखीरा मौजूद है। ये बात नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मगरबी एशिया के मुतालिक वुजरा के गैर रस्मी ग्रुप की 5वीं मीटिंग के दौरान बताई गई। मीटिंग के दौरान इस बात की भी इत्तला दी गई कि जरे मुबादला के जखायर 703 अरब अमरीकी डॉलर की खातिरखा मकदार में मौजूद है। हुकूमत ने बताया कि सप्लाई का इंतजाम बहुत अच्छा रहा है और लोगों को ईंधन और दीगर मसनूआत की खरीदारी के लिए परेशान होने या जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मीटिंग के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अफसरान को हिदायत दी कि जमीनी सतह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपीलों पर अमल आवरी के लिए ठोस इकदाम करें। वजीर आजम ने लोगों से जोर देकर कहा था कि वो मेट्रो और आवामी आमद रफ्त का इस्तेमाल करके और कार पुलिंग का तरीका इख्तियार करके पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी करें। उन्होंने शहरियों से यह भी जोर देकर कहा था कि वो एक साल के लिए गैर जरूरी बैरून मुल्क सफर से इज्तनाब करके और मुल्क में ही सियाहत और तकरीबात मनाकर और गैर जरूरी सोने की खरीद से परहेज करके गैर मुल्की जर मुबादला के जखायर को महफूज रखने में तआवुन दें। वजीर आजम ने किसानों से जोर देकर कहा था कि वो कीमियावी खादों के इस्तेमाल में 50% तक कमी करें और कुदरती काश्तकारी के तरीक़ेकार को अपनाएं, जमीन के रखरखाव में मदद करें, दरामदात पर इन्हिसार में कमी करें और काश्तकारी के लिए डीजल पंप के बजाय शमसी तवानाई से चलने वाले आपाची के पंप को वसी पैमाने पर इख्तियार करने की हौसला अफजाई करें। हुकूमत ने कहा कि मुल्क को इसके लिए एक बड़ी लागत का खर्च उठाना पड़ रहा है क्योंकि बैनुल अक्वामी खाम तेल की कीमतें लगातार बहुत ऊंची सतह पर हैं और ईंधन की बचत इस बोझ में कमी कर सकती है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: इस मीटिंग में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा, अश्वनी वैष्णो, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, के राम मोहन नायडू, सर्बानंद सोनोवाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। ये आकाशवाणी है।

0: मरकज ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आयोजिका मिशन देही कानून 2025 VBG रामजी के निफाज को नोटिफाई कर दिया है। ये कानून इस साल 1 जुलाई से मुल्क भर में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात की वजारत ने बताया कि ये कानून हर माली साल के दौरान 125 दिनों की रोजगार उजरत की गारंटी देते हुए देही भारत को बाइख्तियार बनाएगा। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मुल्क भर में मौजूदा माली साल के लिए नए फ्रेमवर्क को फ़ाल करने की खातिर 95,692 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून MG नरेगा 2005 की जगह लेगा। नए कानून का मकसद माली साल के दौरान स्टेचुरी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस इजाफी रोजगार गारंटी के जरिए देही तरक्यात की रफ्तार में तेजी, आमदनी के तहफ्फुज़ की बेहतर जमानत और देही कुंभों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये कानून उजरत की अदायगियों को बरवक्त बनाने, शफाफ और जवाबदेह अदायगियों पर जोर देता है। साथ ही VBG रामजी कानून में मुकर्र वक्त में काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता फराहम करने की गुंजाइश भी है। विकसित भारत जी रामजी कानून जामे कानूनी फ्रेमवर्क है जो साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर की कौमी विजन को देही रोजगार पैदा करने के साथ साथ हम आहंग करता है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा के लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर कल हलफ लेने की सारी तैयारी हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए कारगुजार वजीर आला और वजीर आला नामजद हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुत्तला किया कि हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और BJP सदर नितिन नवीन शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कई मरकजी वुजरा और BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला भी तकरीब में शरीक होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब आसाम में NDA की लगातार तीसरी मुद्दत के आगाज की अलामत होगी। मगरबी बंगाल की नई रियासती हुकूमत ने आज अपना कामकाज शुरू कर दिया। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीनी इजलास की सदारत की और अमनो कानून की सूरत हाल से मुतालिक रियासती सेक्रेटरिएट नबन्ना में इंतजामी मीटिंगें की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी बंगाल हुकूमत के 5 वजीरों में आज मुख्तलिफ कलमदान तकसीम किए गए। इन वजरा ने 9 मई को वजीर आला सुविंदो अधिकारी के साथ हलफ लिया था। एक बड़ी पेशरफ्त के तहत आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मरकजी हुकूमत की स्कीमों के मगरबी बंगाल में निफाज को मंजूरी दे दी गई। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने आज जराए इब्लाग को बताया कि भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए सरहदी मुहाफिज दस्ते BSF को अगले 45 दिन के अंदर जमीनें फराहम कर दी जाएंगी। साबिका TMC हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से फंड मौसूल होने के बावजूद जरूरी खिताए आराजी की मुंतकली नहीं की थी। नई रियासती हुकूमत ने यह भी बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी फलाह व बहबूद की किसी भी स्कीम को मगरबी बंगाल की नई हुकूमत बंद नहीं करेगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि शेरों की कुदरती पनाहगाहों की बहाली, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी और बिरादरियों के जरिए उनके तहफ्फुज के लिए कॉरपोरेट फंडिंग जरूरी है। नई दिल्ली में आज CII सालाना कारोबारी चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने सनती रहनुमाओं से शेरों की नस्ल के जानवरों को बचाने की आलमी कोशिशों की सरगर्म तौर पर हिमायत करने की अपील की। जनाब यादव ने यह भी बताया कि भारत अगले महीने की 1 और 2 तारीख को नई दिल्ली में शेरों की नस्ल के जानवरों के तहफ्फुज़ से मुतालिक पहली बैनुल अक़वामी चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। शेरों की नस्ल के जानवरों के तहफ्फुज़ से मुतालिक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का मकसद शेर, बबर शेर, चीते और बर्फानी तेंदुए समेत इस नस्ल की 7 बड़ी इकसाम का तहफ्फुज़ करना है। पंजाब के रियासती इंतखाबी कमीशन ने रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 76 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 21 नगर पंचायतों समेत 105 मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात का ऐलान किया है। ये इंतखाब 26 मई को होंगे जबकि वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इन इंतखाबात में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल 13 मई को शुरू होगा और 16 मई तक जारी रहेगा। पर्चों की जांच पड़ताल 18 मई को होगी जबकि 19 मई तक कागजात नामजदगी वापस लिए जाएंगे।

0: सकते हैं। आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती इंतखाबी कमिश्नर राज कमल चौधरी ने बताया कि इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही इंतखाबात वाली सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, म्यूनिसिपल काउंसिलों और नगर पंचायतों की हदूद में मिसाली जाब्ता अखलाक फौरी तौर से नाफिजुल अमल हो गया है। आईसीसी की जानिब से आज जारी की गई मर्दों की एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की टीम दर्जाबंदी में भारत ने अपना पहला मकाम बरकरार रखा है। ताहम भारत की दर्जाबंदी में एक पॉइंट की कमी आई है और वो 119 पॉइंट से कम होकर 118 पॉइंट रह गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 2 पॉइंट हासिल करते हुए 113वां मकाम हासिल कर लिया है। इस मामूली गिरावट के बावजूद भारतीय टीम आलमी क्रिकेट में अब भी सर फहरिस्त एक रोजा बैन अल-अक़वामी टीम है और गुज़श्ता हफ्ते की अपडेट के बाद मर्दों की T20 बैन अल-अक़वामी दर्जाबंदी में भी अपना पहला मकाम बरकरार रखे हुए है। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कल गर्मी की लहर की हालात बरकरार रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4-5 दिन के दौरान मगरबी राजस्थान के इलाकों में रात के वक्त भी गर्म सूरत हाल रहेगी। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाजे को इस दहाई के सबसे बड़े बहरानों में से एक करार दिया। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है क्योंकि मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन और LPG का 45 दिन के लिए जखीरा मौजूद है। मरकज ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी एक्ट पर अमल आवरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा कल आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। रियासत में NDA की लगातार ये तीसरी मुद्दत की हुक्मरानी होगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
2: मीडियम वेव 241.5 चैरमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ में ये गीत सलाम एल्बम से।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुलाम अली की गाई गजल, एल्बम है लम्हा लम्हा।

पेश है कार्यक्रम की अगली गजल। कलाकार हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर, शायर हैं इशरार अंसारी।

0: गुलाम अली की गाई इस गज़ल के साथ ही गैर फिल्मी गीत एवं गज़लों का प्रोग्राम अंजुमन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष से संबंधित कवि गोष्ठी। प्रतिभागी हैं अशोक कुमार सिंह, अत्रि भारद्वाज, राम नरेश और सविता गौरव।
1: आकाशवाणी वाराणसी की इस काव्य गोष्ठी में आप श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस काव्य गोष्ठी में मेरे साथ राम नरेश नरेश जी, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर सविता सौरभ और मैं डॉक्टर अत्रि भारद्वाज आपसे मुखातिब हैं। आज की इस कवि गोष्ठी को शुरू करने के पहले आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ये एक सुखद संयोग है। मैं इस संयोग को चार पंक्तियों में वर्णित करता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि हिंदी पत्रकारिता के भी 200 वर्ष हो गए हैं और दोनों ही माध्यम संचार के हैं, तो मैं चार पंक्तियों से शुरू करता हूं कि ज्ञान संवर्धन मनोरंजन करता और लेता देता संज्ञान, आकाशवाणी वाराणसी को मुबारक 90वां साल। श्रव्य और हिंदी पत्रकारिता के भी हो गए 200 साल, श्रव्य और अंकित शब्दों का वैभव बड़ा विशाल। इन पंक्तियों के साथ मैं कवि सम्मेलन को शुरू करते हुए सबसे पहले राम नरेश नरेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपने हिस्से का काव्य पाठ करें। इन पंक्तियों के साथ कि पुरवाइयों की शोक अदा भी अजीब है, कच्चे घरों से बोलिए बारिश करीब है।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष, गोरों से लड़ाई बीरताई राष्ट्र प्रेमियों का, गोरों से लड़ाई बीरताई राष्ट्र प्रेमियों का, देश की आजादी में महान योगदान है। गोरों से लड़ाई बीरताई राष्ट्र प्रेमियों का, देश की आजादी में महान योगदान है। पूर्व पश्चिम उत्तर से दक्षिण की सभी बोलियों के आकाशवाणी द्वारा हिंदी के प्रचार पर गुमान है। आकाशवाणी द्वारा हिंदी के प्रचार में गुमान है। खेत खलिहान गांव के किसान होली ईद दशहरा दिवाली क्रिसमस का होता सम्मान है।
1: बहुत सुंदर।
2: 1936 से आज 90 वर्ष बीत

0: गए। 1936 से आज 90 वर्ष बीत गए। आकाशवाणी भारत का अपने आन बान शान है, आकाशवाणी
1: वाह
0: भारत का
1: वाह नरेंद्र जी,
0: अपने आन बान शान है।
1: बहुत सुंदर।
0: चाहे हो गरीब या अमीर ग्रामवासी भाई, चाहे हो गरीब या अमीर ग्रामवासी भाई, अरे बेटी की पढ़ाई का भी रहता हरदम ध्यान है, बेटी की पढ़ाई का भी रहता हरदम ध्यान है। स्वर बेला में आता बिरहा फगुआ कजरी ठुमरी गीत, आकाशवाणी करता सभी कलाकारों का सम्मान है,
1: वाह वाह बहुत बढ़िया।
0: आकाशवाणी करता सभी कलाकारों का सम्मान है। खाद बीज कैसे डाले उत्पादन हो जाए दोना, स्वास्थ्य शिक्षा मौसम किस दर्शन में देता ज्ञान है। हरि भैया राम राम पंचो राम राम आज, हरि भैया राम राम पंचो राम राम आज, आकाशवाणी का यह प्यारे अद्भुत अमित पहचान है। लोक भाषा में युवाओं के लिए है युवा वाणी, विविध भारती में गीत सुंदर विद्यमान है। सुबह शाम सब समाचारों को देने वाला, सुबह से शाम सबको समाचार देने वाला, आकाशवाणी भारतवासियों का राष्ट्रगान है।
1: बहुत सुंदर।
0: वंदे मातरम के गीत से होता बिहान रोज, वंदे मातरम के गीत से होता बिहान रोज, अरे हाथ जोड़ खड़े श्रमिक सीमा पर जवान है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय सुखद, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सुखद, आकाशवाणी को सत सत नमन करता हिंदुस्तान है, आकाशवाणी को सत नमन करता हिंदुस्तान है।
1: बहुत अच्छा,
2: बहुत
1: बहुत
2: सुंदर,
1: सुंदर,
2: बहुत
1: बहुत सुंदर।
0: अगली रचना।
1: स्वागत,
0: ऐसे भारत के किसान
1: स्वागत।
0: श्रोताओं, देश के लिए समर्पित मातृभूमि के लिए है मेहनत उनकी शान, ऐसे भारत के किसान। समर्पित मातृभूमि के लिए है मेहनत उनकी शान, ऐसे भारत के किसान, ऐसे भारत के किसान। नई तकनीक से उत्पादन होता दूना, नई तकनीक से उत्पादन को होता दूना, सजा धजा गांव जैसे बॉम्बे और पूना, अरे बिछौना धरती को बनाते, बिछौना धरती को बनाते, ओढ़ना खुला आसमान, ऐसे भारत के किसान,
1: बहुत
0: ऐसे
1: सुंदर।
0: भारत के
1: नार
0: किसान।
1: नरेश जी,
2: बहुत सुंदर।
0: आग बरसाता हो चाहे गर्मी का महीना, आग बरसाता हो चाहे गर्मी का महीना, कप कपाती ठंडी में भी अरे बहता है पसीना, कप कपाती ठंडी में भी बहता है पसीना, फिर भी हंस कर गेहूं धान से अरे सजाते खलिहान, ऐसे भारत के किसान,
1: वाह
0: ऐसे भारत के किसान। अपने देश में हरित और श्वेत क्रांति आई, अपने देश में हरित और श्वेत क्रांति आई, चारों ओर खुशियों की बहार यहाँ छाई, विकास से कदम मिलाकर, विकास से कदम मिलाकर चलता आज सीना तान, ऐसे भारत के किसान,
1: वाह वाह
0: ऐसे भारत
1: वाह।
0: के किसान। अनुशासन और संस्कार बच्चों में आ जाए, अनुशासन और संस्कार बच्चों
1: बच्चों
0: में
1: में
0: आ
1: आ जाए,
0: जाए, घर घर में शिक्षा की ज्योति पुंज जगमगाए, घर घर में शिक्षा की ज्योति पुंज जगमगाए, अरे अरमान है सोने की चिड़िया, अरमान है सोने की चिड़िया, फिर से बने हिंदुस्तान, ऐसे भारत के किसान, ऐसे
1: ऐसे
0: भारत
1: भारत
0: के
1: के किसान।
0: किसान।
1: वाह वाह,
0: पति
1: बहुत सुंदर।
0: पत्नी जब मिलके करेंगे खेती और किसानी, पढ़ लिख के कलेक्टर तब बनेगी बिटिया रानी, रहते रंग के और नरेश, अपने देश की संस्कृति है, अरे रहते रंग के और नरेश साथ हिंदू मुसलमान, ऐसे भारत के
1: वाह
0: किसान,
1: वाह वाह,
0: ऐसे भारत
2: क्या
0: के
2: बात,
0: किसान।
1: वाह
2: बहुत
1: बहुत,
2: सुंदर,
1: वाह वाह, बहुत बढ़िया।
3: अभी किसानों का शब्द चित्र खींचा राम नरेश नरेश जी ने, और अब मैं प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर सविता सौरभ जी को आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि फिर होने दो व्यथित हृदय, फिर से वह गीत लिखो, अश्रु लिखो, मुस्कान लिखो, बुन बुन करके प्रीत लिखो।
0: बहुत
3: डॉक्टर सविता सौरभ।
2: धन्यवाद। मैं मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। कौन ने आ

0: जो कमल था खिला ही
1: खिलाई। बहुत
0: नहीं,
1: सुंदर।
0: साथ चलने की चाहत रही दो कदम,
1: वाह,
0: साथ चलने की चाहत रही दो कदम, क्या करें बन सका सिलसिला ही नहीं,
1: वाह
0: क्या
1: वाह,
0: करें बन सका सिलसिला ही नहीं। और अभी हम लोगों ने मातृ दिवस मनाया है,
1: स्वागत।
0: हालांकि अपने यहाँ के नहीं है, ये आयातित है, फिर भी कुछ पंक्तियां मैं माँ के ऊपर रख रही हूँ।
1: जी,

0: वही जो हर दम तुझको रखती है सबसे आगे, एक वही जो हर दम तुझको रखती है सबसे आगे। मोती माणिक क्या हीरा जो उसने तुझ में जड़ा नहीं,
1: वाह वाह वाह,
0: मोती माणिक क्या हीरा जो उसने तुझ में जड़ा नहीं। और माँ पर कुछ दोहे देखें।
1: स्वागत है स्वागत है।
0: दुर्लभ दर्शन ईश का मत कर चित्त उदास,
1: बहुत सुंदर,
0: दुर्लभ दर्शन ईश का
1: मत कर
0: मत कर चित्त

0: और अब एक गजल
1: स्वागत
0: प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऐसा कौन पूरी उम्र जो रुसवा नहीं होता
1: वाह बहुत सुंदर।
0: है।

0: कोई जो एक पल तन्हा नहीं
1: वाह वाह बढ़िया
0: होता,
1: बढ़िया बढ़िया
0: बताओ है कोई जो एक पल तन्हा नहीं होता। और शेर अर्ज किया है,
2: स्वागत है।

0: नहीं होता, और मक्ते का शेर अर्ज किया है।
1: स्वागत।
0: चलो माना सफर में है बहुत सी मुश्किलें सौरभ, चलो माना सफर में है बहुत सी मुश्किलें सौरभ, कहाँ सहरा नहीं होता, कहाँ दरिया नहीं
1: वाह
0: होता,
1: वाह वाह वाह,
0: कहाँ सहरा
1: बहुत अच्छा
0: नहीं
1: बहुत अच्छा,
0: होता, कहाँ दरिया
1: बहुत सुंदर
0: नहीं होता।
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर
0: धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया। अभी आप डॉक्टर सविता सौरभ को सुन रहे थे। उनकी शुरुआत हुई, ख्वाब थे जो हकीकत में ढलने लगे। ये पंक्तियाँ ये बताती हैं कि हमको सपने देखने चाहिए। बहुत सुंदर उन्होंने चित्र खींचा अपनी कविता में और गज़ल में। और अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को, जो बहुत अच्छे नवगीतकार हैं, और मैं उनको इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि डूब गए हम मधु अतीत में, भूल गए बेगाने दिन हैं,
2: बहुत बढ़िया,
1: कल तक तुम भी तुम थे मन में, कल तक तुम ही तुम थे मन में, रीते आज तुम्हारे बिन है। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह।
2: इस कवि गोष्ठी का बहुत अच्छा संचालन कर रहे डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी। मैं आप सब से मुखातिब होते हुए अपना एक गीत पढ़ रहा हूं।
1: स्वागत।
2: खुशबू आए तो किस वन से आए, खुशबू आए तो

0: बाबा ने बोया था, हमने मिल बांट लिया, जो आया हिस्से में सबका सब काट लिया।
1: बहुत बढ़िया।

0: किस
1: वन
0: से आए, दादी के नानी के वो सब जो किस्से थे, दादी के नानी के वो सब जो किस्से थे, वो भी तो जीवन के अपने ही हिस्से।

0: खुशबू आए तो किस बन से
1: आशीष अहो भी
0: आए चंदन।

0: और ये सुनिएगा, छाया उठ जाती है जब भी अपने सिर से,
1: बहुत बढ़िया,
0: छाया उठ जाती है
1: जब भी अपने सिर से,
0: जब भी

0: किस
1: वन से
0: वन
1: आए।
0: से आए,
1: बहुत सुंदर।
0: बंजर हो जाने पर, बंजर हो जाने पर भीतर से बाहर से बन

0: दूरी के।
1: बहुत सुंदर सर।
0: जब चौराहों पर मिलती है, जब चौराहों

0: और आकाशवाणी के 90 वर्ष हो रहे हैं। मैं बहुत दिनों से 75 से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ और
1: वाह
0: मैं दीर्घजीवी हूँ। आकाशवाणी
1: क्या बात।
0: उसका नाम ऐसे ही चमकता रहे। और इसी के साथ हमारे नगर के वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ कवि, हम सबों के प्रिय जो अभी तक संचालन कर रहे थे, अत्री डॉक्टर अत्री भारद्वाज जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने हिस्से का काव्य पाठ करें।
2: स्वागत है। धन्यवाद अशोक जी। एक खत शीर्षक से मैं कविता पढ़ रहा हूं।
1: स्वागत है।
2: मैं तुम्हें एक खत लिखूंगा, मैं तुम्हें एक खत लिखूंगा, मगर उसे डाक में नहीं डालूंगा।
3: क्या बात।
2: बनाऊंगा

0: उसकी एक नाव जिस पर सवार कर अपनी सोच ठेल दूंगा बरसात के पानी में तुम्हारी ओर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: तुम भी एक खत लिखना जवाबी, तुम भी एक खत लिखना जवाबी, मगर उसे डाक में मत डाल देना, मगर उसे डाक में मत डाल देना। नाव पहुंचने से पहले ही जब डूब जाएगी, तुम तक नहीं पहुंच पाएगी मेरी सोच, तब झुंझलाता हुआ मुझ पर, तुम झुंझलाते हुए मुझ पर, और गुस्से में आकर फाड़ देना उस खत को जो तुमने अभी लिखा ही नहीं।
2: बहुत सुंदर,
1: बहुत अच्छा।
0: और एक गजल में दे रहा हूं आपको। राह में यूं ही मिल गए होंगे और फिर रास्ते बदल गए होंगे।
1: वाह,
3: बहुत सुंदर।
0: राह में यूं ही मिल गए होंगे
1: और
0: फिर रास्ते बदल गए होंगे, फिर मेरी याद आ गई होगी, आंख में अश्क ढल गए होंगे।
3: बहुत बढ़िया।
0: वो भी मिलने लगे रकीबों से, वो भी मिलने लगे रकीबों से, हम भी दुश्मन से मिल गए होंगे, तुम भी लड़खड़ा रहे होगे, हम भी कुछ कुछ संभल रहे होंगे।
1: क्या बात,
3: बहुत सुंदर।
0: तुम भी लड़खड़ा रहे होगे, हम भी कुछ कुछ संभल रहे होंगे। कल तेरा शहर बहुत रोशन था, कल तेरा शहर बहुत रोशन था, कितने नशे मन जल गए होंगे।
3: क्या बात है।
0: सहर मिलती सहर कितनी खिली खिली सी है, ये अंधेरे नकल रहे होंगे।
1: वाह,
0: सहर कितनी खिली खिली सी है, ये अंधेरे नकल रहे होंगे। और आखिर यह है कि तुम्हारा साथ पल भर पाने को, तुम्हारा साथ पल भर पाने को, तुम्हारा साथ पल भर पाने को, फांसले साथ साथ चल रहे होंगे।
1: वाह वाह।
0: एक गजल में और दे रहा हूं आपको।
1: स्वागत।
0: बात लोगों की जो कह पाए नहीं है, हम सफर मेरे वो हम साए नहीं है।
1: क्या
0: बात लोगों की जो कह पाए नहीं है, हम सफर मेरे वो हम साए नहीं है, अपने कदमों की जमी में जो घिरे हैं, आसमां पे वो कभी छाए नहीं,
1: छाए नहीं।
3: बहुत बढ़िया।
0: अपनी फितरत में लिखी है साफ गोई, अपनी फितरत में लिखी है साफ गोई, हम किसी को इसलिए भाए नहीं है, हम किसी को इसलिए भाए नहीं है, बात लोगों की न हो जिसमें कहीं, गीत हमने वो कभी गाए नहीं,
1: गाए नहीं।
0: ये कवि जनों की ओर से है कि बात लोगों की न हो जिसमें कहीं, गीत हमने वो कभी गाए नहीं है। और उस शहर को छांव की कीमत पता है, जिस शहर में पेड़ के साए नहीं।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: और आखिरी गजल दे रहा हूं कि जमीनें सारी बिक गईं कर्ज चुकाने में, पटवारी बता रहा है अभी लगान बाकी है।
1: क्या बात।
0: जमीनें सारी बिक गईं कर्ज चुकाने में, पटवारी बता रहा है अभी लगान बाकी है, कभी खुदा मिला तो उससे पूछूंगा जरूर, बता तेरे इस बंदे में सब्र कितना बाकी है।
3: बहुत बढ़िया।
0: बता तेरे इस बंदे में सब्र कितना बाकी है, तेरे सजदे में झूमा हूं और सोच रहा हूं, तेरे सजदे में झूमा हूं और सोच रहा हूं, दुनिया की फिक्र है दिल में, तेरा ख्याल बाकी है।
1: बहुत बढ़िया।
0: तेरा ख्याल बाकी है। और बेटी की रुखसती पर दिल को मिला सुकून, बेटी की रुखसती पर दिल को मिला सुकून, फिर आया ख्याल अभी एक और बेटी बाकी है।
3: बहुत बढ़िया।
0: और मुर्दे को बर्फ में रखे दो दिन गुजर गए, ये ध्यान दीजिएगा कि मुर्दे को बर्फ में रखे दो दिन गुजर गए, बेटे अभी विदेश में हैं, आना बाकी है। और पिंजरा खुला हुआ है, सयाद भी है बेखबर, मैं तौल रहा हूँ पर अपने अभी उड़ान बाकी है।
1: बहुत अच्छा।
0: और इन गजलों के साथ मेरे साथ आज जिन रचनाकारों ने काव्य पाठ किया, डॉक्टर राम नरेश नरेश, डॉक्टर सविता सौरभ, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और मैं डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, आप सब से विदा लेते हुए पुनः पुनः शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।
4: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष से संबंधित कवि गोष्ठी। प्रतिभागी थे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, राम नरेश और डॉक्टर सविता सौरव। मीडियम 241.5 जैन मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी

0: विचारों की अभिव्यक्ति और अधिकार प्राप्ति का आधार सत्याग्रह।
1: आइए अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाएं।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग का

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है पंडित किशन महाराज का एकल तबला वादन। ताल है 3 ताल। आपके साथ हारमोनियम पर हैं मन्नू लाल मिश्रा।

கத்திருக்கான தான் நகத்தில் தான் தான் நகத்தில் தான் தான்.

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित किशन महाराज का एकल तबला वादन, ताल था तीन ताल। आपके साथ हारमोनियम पर थे मन्नू लाल मिश्रा। मीडियम वेव 241.5 किलोहर्ट्ज़ यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: मानव मात्र में भेद क्यों?
2: समानता सह अस्तित्व हर जीव का अधिकार।
1: अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें दिखाई सत्य, शांति, प्रेम और अहिंसा की राह।
3: आइए इस राह पर चलने का संकल्प लें, सत्याग्रह के मूल मंत्र को बनाएं लक्ष्य प्राप्ति का आधार।
0: मीडियम वेव 241.5 किलोहर्ट्ज़ यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
5: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
4: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार

हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।